0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: and shine. Start
1: fresh. Wake up with the sun and the sound of fun.
0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर नौ मिनट हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और जहां पे भी होंगे हंसते मुस्कुराते हुए अपने परिवार के बीच में होंगे. तो चलिए भाई प्यारा सा दिन को बनाते हैं और खूबसूरत और हल्का सा, क्योंकि अभी भी बाहर थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, यानी कि कह सकते हैं अंधेरा है, पर उन लोगों के लिए अंधेरा नहीं है जो घर से बाहर निकल चुके हैं, काम पर जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं या थोड़ी देर में बस निकलेंगे और उठ चुके हैं. तो मुझे पता है ये मोमेंट जो होता है ना कि अरे बस अलार्म बजता रहे और बार बार उसको बंद करते रहे और को बस पाँच मिनट, ये पाँच मिनट का 15 मिनट से एक घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता. तो अगर आपके घर में किसी ने रेडियो ऑन कर दिया है तो बस आपको इतना ही कहेंगे, उठ जाओ अब, क्योंकि अब है आपका टाइम, क्योंकि आपने अपने बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफिल करना है, पूरा करना है. तो इन्जॉय कीजिए राइज एंड शाइन. मैं यहीं पर हूँ आपके साथ. अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो कर सकते हैं 54991294 पर. इन्जॉय कीजिए मॉर्निंग ये ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आप सबके लिए.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:22 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही

0: प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और इस समय मैं हूँ आपके साथ पूनम। हाथ में गर्म चाय हो, बाहर ठंडक हो, तो बस मॉर्निंग बन गई चाय की हर चुस्की के साथ। आज का दिन अच्छा होता जाएगा। इंजॉय योर टी, इंजॉय योर मॉर्निंग। और उन सभी हम ड्राइवर्स को बोलेंगे जो भी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे कोई भी गाड़ी में जा रहे हैं, इस समय वो गाड़ी आपकी है। और हम आपको यही कहेंगे ये गाड़ी भी आपकी है, मंजिल भी आपकी है, रोड्स भी आपकी है, बस ठंडी हवा को इंजॉय कीजिए। पुराना गाना चल रहा है आपका परफेक्ट, जो ये कहते हैं ना, जो सफ़र है परफेक्ट होता चला जाए और आप स्माइल करते रहें। हम तो यही चाहेंगे। उम्मीद है आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे, बट आप मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 32 मिनट हो चुके हैं दोस्तों. फ्राइडे का प्यारा सा दिन और 21 अगस्त लग गया भाई, क्या करें. ये टाइम ऐसे बीत रहा है, साल कब शुरू हुआ और कब कहाँ मिड से भी थोड़ा सा ऊपर चला गया है. तो हम तो यही बोलेंगे, ये दिन ऐसे ही निकलते जाएंगे, सालों साल ऐसे ही निकल जाएंगे. पर आपको एक दिन रियलाइज़ होगा, अरे कई चीज़ें हमने तो बहुत मिस कर दी. तो हम तो आपको बोलते हैं एवरी डे आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर किया कीजिए. जो आपकी बचपन में कुछ हॉबीज़ रही होंगी उसको दोबारा से शुरू कीजिए. और अगर नहीं है अभी तक कोई हॉबी तो ज़रूर अपनी एक ऐसी हॉबी बनाएं जो आपको आगे मतलब हर वक्त एनर्जेटिक रखे. तो हम तो कहेंगे योगा करो, स्विमिंग करो, जो आपको पसंद है, पेंटिंग करो. स्पेशली कई लोगों को खिलौने बनाना पसंद होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग सी अनोखी उनमें होती

0: होती है, इनबिल्ट होती है, कहते हैं बाय बर्थ होती है, बट वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उनको भूले मत, साथ साथ चलाते रहिए आज पूरा दिन, जब भी जहाँ भी आपको टाइम मिले रिलैक्स फील करें तो ये कुछ ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपके दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जैशन हरदयाल जी साथ जुड़े हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ, तो इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच डैरन, श्वेता, रविश, प्रशा, लुवेश, आपादू फैमिली साथ दे रही है, इन्जॉय कर रही है। दीपक जी साथ दे रहे हैं, वेदू जी के लिए एक बेस्ट विशेज भेज रहे हैं और कह रहे हैं हमेशा वो खुश रहें और मैं हमेशा खुश रहूं। क्या बात है, सो नाइस ब्यूटीफुल मैसेज सर। सरोज जी अपने सारे परिवार के लिए बहुत सारा प्यार भेज रही हैं, बट मेरे लिए उन्होंने बहुत सारे दिल भेजे हैं। थैंक यू सो मच मैम आपका बहुत बहुत इतने सारे दिल भेजने के लिए, इनमें से इससे डबल मेरी तरफ से आपको। तो चलिए हेमलता भूजन जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं प्रोग्राम को, और नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली मांग रही हैं भारती स्वीटी एंड विक्रम जी के लिए। विक्रम जी इस समय ब्रेड, गरम गरम ब्रेड डिलीवर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब वो ब्रेड डिलीवरी करने जाते हैं तो मेरे को उसकी खुशबू आ जाती है। आपको खुशबू नहीं आ रही, मुझे भी यहाँ पर आ रही है, मॉर्निंग का टाइम है, आप मुझे ब्रेड की याद ला रही है और मुझे भूख लग जाएगी। तो चलिए भाई डिलीवरी करते रहिए, इन्जॉय कीजिए, जिनके घर में भी जाए वो ब्रेड हमेशा खुश रहें। ज्योतिष जी शातो बनारस से साथ दे रही हैं, आशनी, रेखा, सुरेखा, AMT एंड मधु फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है और उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहती है, देखा सुबह सुबह मैं तुम्हें याद करी, तुम्हें मेरी याद आई, बिल्कुल याद आई होगी, आपने याद किया उनको याद आई होगी। इन्जॉय कीजिए गाने।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ पूनम। फ्राइडे की सुबह है तो मूड भी थोड़ा सा हल्का और दिल खुश रखिए। चलिए देखते हैं आज आपकी राशि में क्या खास है। सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि,
1: आज कोई छोटा सा काम आपको बड़ी खुशी दे सकता है। अपने तरीके से दिन को आगे बढ़ाइए। शाम तक खुद से कहेंगे आज तो मजा आ गया। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज अपने लिए भी कुछ अच्छा चुनिए। पसंदीदा खाना या प्यारी सी कंपनी मूड बना सकती है। जो मिला है उसको खुलकर एंजॉय कीजिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी बातों में खूब मस्ती रहेगी। आपकी जो कंपनी है, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो आपको बहुत ही खुश रखेंगे। किसी से कोई कुछ मज़ेदार बातचीत याद आ सकती है। हो सकता है आप ऑफिस जाएं और वहाँ पर आपको अपने घर में जो मस्ती मजाक हुआ होगा वो बातें याद आएं। जहाँ जाएं थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाएं। लकी कलर बनेगा आपका येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज घर की कोई छोटी बात दिल खुश करेगी। किसी अपने के साथ हंसी मजाक का मौका बन सकता है। अपनी खुशी उनके साथ बांटिए। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट होकर निकलिएगा। आपकी पर्सनालिटी लोगों का ध्यान खींच सकती है। अपना कॉन्फिडेंट अंदाज पूरे दिन बनाए रखिएगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज दिन को बहुत सीरियस मत बनाइएगा। काम पूरा कीजिए, बीच में थोड़ा सा फन भी इंक्लूड कीजिए। अपनी पसंद के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा। अपनी हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ अच्छा खाइएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: आज कोई प्यारा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। किसी अपने के साथ बिताया वक्त खास लगेगा। दिल खुश हो सकता है। कोई खुशी वाली बात, कोई मैसेज मिल सकता है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज किसी नए अनुभव के लिए तैयार रहिएगा। अचानक बना कोई प्लान मज़ेदार हो सकता है। अपनी पसंद को आज थोड़ा सा इग्नोर मत कीजिए। उसके साथ में रहिए। जो आपकी पसंद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज घूमने फिरने का मूड बन सकता है। छोटा सा चेंज भी दिन को फ्रेश बनाएगा। जहाँ जाएं अपने हैप्पी एनर्जी को, अपने परिवार को अपने साथ लेके जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पास पूरी दुनिया है। लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज अपने किसी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिएगा। हर खुशी के लिए बड़ी वजह जरूरी नहीं होती। खुद को एक छोटी सी ट्रीट भी दे सकते हैं। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज दोस्तों के साथ थोड़ा सा फन ऐड कीजिएगा। कोई मैसेज या कॉल मूड बना सकता है। आपका कोई प्लान बन सकता है, चाहे नेक्स्ट 2 दिन के लिए, क्योंकि हमारा वीकेंड शुरू हो रहा है। तो अपना कूल और जो चेयरफुल अंदाज है इसको साथ में कैरी कीजिएगा। लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर है 5।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज सुबह अपनी पसंद के साथ शुरू कीजिएगा। अच्छा सा म्यूजिक या कॉफ़ी या चाय के साथ में दिन को खूबसूरत बनाने के लिए आपको अपने परिवार की ज़रूरत है। आपकी खुद की मुस्कुराहट की ज़रूरत है। तो छोटी छोटी खुशियों को दिल में दिल से इंजॉय कीजिएगा। दिल में परिवार को रखिएगा, अपने दोस्तों को रखिएगा। लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों फ्राइडे है इसलिए काम भी कीजिए और खुशियाँ भी बटोरिए। दिल खुश रखिए और दिन को अपना बनाइए। मैं थी आपके साथ पूनम। अपने दिन को शानदार बनाइएगा। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musti. Musti.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं कर

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार. आज शुक्रवार 21 अगस्त 2026 के पहले प्रातकालीन फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सबसे पहले स्थानीय खबरें. मॉरिशस ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया है. पोर्ट लुइस में कल हस्ताक्षरित ये सरकारी समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालीन एक सहयोग का ढांचा भी तैयार करता है. मॉरिशस और भारत के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भी बातचीत की गुंजाइश रखी गई है. व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत कर सकते हैं, जबकि हर साल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार का भी अवसर रहेगा. और सऊदी अरब की दमम जेल में बंद मॉरिशस के नागरिक अनिशन एलन से मॉरिशस के राजदूत ने मुलाकात की. ड्रग मामले में हिरासत में लिए गए एलन की कानूनी स्थिति और जेल में उनकी परिस्थितियों की जानकारी ली गई, जबकि उनके वकील गमावालाइडन ने उनकी बेगुनाही पर भरोसा जताया है. एबन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस इस प्रयोगशाला का उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने और नए प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर देना है. मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने रेजवी में मॉरिशस कल्चर ट्रिप .mu नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. इसका उद्देश्य पर्यटकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को मॉरिशस के इतिहास, संस्कृति और विरासत को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है. और रेजवी में आयोजित एक फील्ड डे के दौरान फारी ने आयन और जिंक से भरपूर जैव सुदृढ़ बीन्स की किस्म फेरीना को फिर से किसानों के सामने पेश किया. अब मुख्य चुनौती इस किस्म को अधिक संख्या में किसानों द्वारा अपनाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाने की है, ताकि स्थानीय उत्पाद खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ताज़ा मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इमारतों और अन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब तक देश के पास पर्याप्त एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं होगी, तब तक रूस गंभीरता से शांति के बारे में नहीं सोचेगा. तो इसके साथ ये

समाचार समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम की हाल की ओर। मौसम का हाल, आम हालत, पूर्व से आने वाली कुछ बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगी अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी वर्षा होगी। आंशिक तौर पर दोपहर बाद में विशेषकर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होगी। शाम के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के जुआर उठेंगे। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर। तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी ड्रॉप की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे। आज्ञा दीजिए।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, 6:10 मिनट हो चुके हैं। हम उनके लिए गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं जो अभी अभी उठे हैं या 10-15 मिनट पहले उठे होंगे और कह रहे होंगे अरे अब तो काम पे जाना है, चलो भाई उठ ही जाते हैं। तो चलिए उठिए, बहुत सारे विशेज आए हैं, एक दूसरे की तरफ से प्यार से सुनते हैं। तो बर्थडे विशेज हैं मामा वनीशा के लिए, डॉटर सुनीति, सनवीर एंड हस्बैंड विक्रम जी की तरफ से, और कह रहे हैं लंबी उम्र पाओ, हमेशा खुश रहो। बहुत सारे बर्थडे विशेज आए हैं और दिल तो कर रहा है भाई सबका ही पढ़ने का, क्योंकि इस दिन के लिए तो सब इंतज़ार में रहते हैं, पूरा साल इंतजार होता है। साथ में इस समय हमारे साथ हैं अनुष्का गुडलैंड से और जिनेश का बर्थडे है, उनके बेटे का, मम्मी डैड सिस्टर छोटू ब्रदर सोम एंड नानी नाना की तरफ से बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाना धन्वेश्वर, नानी सुनीता, पापा ऋषि, मामा मीना, तन्हा देवदोस फैमिली की विशेस कर रहे हैं अपनी पोती हंसवी को जो कि आज 12 साल की हो गई, मामा बबीता मोहन आज 54 ईयर्स के हो गए हैं, बेटी काजल, बेटा ऋतिक रोशन, हस्बैंड सुनील एंड सन इन लॉ विश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो। एक और है सानी कालू जी का भी आज बर्थडे है जो कि गुडलैंड से हैं, और मेले जेने ने उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं फ्रॉम मॉम बिंदिया डैड सोना ब्रदर स्वयं एंड ऑल कालू फैमिली विश कर रहे हैं उन सबको, और बस इतना ही कह रहे हैं हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो, ज़िंदगी अप एंड डाउन देती रहती है बट जो आपका साथ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलो भाई सबके यही मैसेज हैं, तो हम भी एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए चला ही देते हैं, इन्जॉय कीजिए इस गाने को।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:24 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ. मॉर्निंग शुरू हो गई है भाई. अब आपको काम पे जाना है पर कई पेरेंट्स अभी बच्चों को रेडी कर रहे होंगे स्कूल के लिए कॉलेज के लिए. हो सकता है ब्रेकफास्ट दे रहे हो सकता है घर में कोई कह रहा हो कि अरे कहाँ गए मेरे कपड़े, यहाँ पर नहीं रखा बैग, यहाँ पर बुक्स नहीं नज़र आ रही, यहाँ पेन नहीं नज़र आ रहा, अरे रात को क्यों नहीं रेडी करके रखा सब लोगों ने. बट अभी जब पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इन बच्चों की मॉर्निंग शुरू हुई है, बस आप इंजॉय कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा. पर अगर आपको भी काम पे जाना है तो थोड़ा टाइम अपने लिए 2-3-4-5-10 मिनट अपने लिए निकालना, जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकें कि आप भी इस दुनिया के एक हिस्सा हैं. सिर्फ बाकियों के लिए नहीं, ज़िंदगी आपकी खुद की भी होनी इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए भाई इंजॉय कीजिए, बट थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार. हम सभी को कहते हैं गुड मॉर्निंग, इंजॉय कीजिए गाने को.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

नरीम लाते चलिए सुबह के ठीक 6:30 बजे। शुक्रवार 21 अगस्त 2026 की इस प्रातकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया। पोर्ट लुइस में कल हस्ताक्षरित ये सरकारी समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा भी तैयार करता है। मॉरिशस और भारत के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भी बातचीत की गुंजाइश रखी गई। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत कर सकते हैं, जबकि हर साल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार का भी अवसर रहेगा। एबन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस इस प्रयोगशाला का उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने और नए प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर देना है। FCC की हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिले में कारोबारी और सोशल मीडिया हस्ती मुजफ्फर लाल महमूद उर्फ मूस की तलाश तेज कर दी गई है। कल उनके घर पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए साथ चलने से इनकार करने के बाद आधिकारिक समन जारी किए जाने से पहले ही वह लापता हो गए। लाहौजा में जमीन विवाद को लेकर कथित गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल, जबकि संदिग्ध हमलावर के भी घायल होने की खबर है। वहीं कल बोबासे में मेट्रो लाइन के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके गले पर चोट के निशान पाए गए। और उधर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच में बी एक्सचेंज के पूर्व मैनेजर नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया, जबकि गुन्नेट्स में स्थित उनके घर की तलाशी में करीब 2 लाख रुपए और विदेशी मुद्रा समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ताजा मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस अब अपने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस सिलसिले में भारत सरकार के साथ एक समझौता तय किया गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर की आधिकारिक समारोह कल आज दोपहर

0: पोर्टलुइस में हुई, कल दोपहर पोर्टलुइस में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। सरकार से सरकार के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन में मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये पहल एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को अधिक सुरक्षित बनाना है। वहीं भारत के पेट्रोलियम एवं गैस नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मौजूद विश्वास और मजबूत संबंधों को दर्शाता है। इस पर हम सुनते हैं ये रिपोर्ट सुमेरा अकबर अली के साथ।
1: सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की औपचारिक भारत यात्रा के दौरान पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई का मुद्दा चर्चा में रहा था। इस साल की शुरुआत में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान श्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से ये मुद्दा उठाया गया था। कल पोर्टली में इन सभी बातचीत को सच्चाई का रूप दिया गया जो मध्य पूर्व की जंग से पहले की जाती आ रही है। इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। पोर्टली में दो दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया, पहली मिशन और भारतीय सरकारों की प्रोटोकॉल संधि और दूसरी दस्तावेज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट की रही।
2: द साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर मॉरिशस, वन दैट विल अबव एवरीथिंग एल्स।
1: डॉक्टर नवीन राम गुलाम बताते हैं, ये प्रोटोकॉल संधि मॉरिशस के लिए रणनीतिक अहमियत रखती है। सबसे पहले हमारी ऊर्जा सुरक्षा, हमारी अर्थनीति और पक्के तरीके से दोनों देशों की सॉलिडारिटी और भरोसेमंद रिश्तों को मजबूत किया गया है। सरकार और मुस्लिम जनता की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मॉरिशस और भारत की साझेदारी को मजबूत करने में खुद कटिबद्धता दिखाई। मॉरिशस के लिए ये प्रोटोकॉल समझौता एक संगीन वक्त पर तय हुआ है, जब ऊर्जा की वैश्विक मंडियां अभूतपूर्व बदलावों और अस्थिरताओं का सामना कर रही हैं।
2: When global energy markets are beset by unprecedented volatility.
1: ये G2G समझौता 5 सालों के लिए है। सितंबर के आखिर में इंडियन ऑयल रिफाइनरी से पहली खेप के पहुंचने का इंतजार है। भारतीय पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये तरक्की न सिर्फ एक सादा व्यापारिक ट्रांजैक्शन है बल्कि दोनों देशों का भरोसा दर्शाती है। हरदीप सिंह पुरी बताते हैं,
3: मॉरिशस फ्यूल सिक्योरिटी नाउ विल नॉट रेस्ट ऑन द अनसर्टेनिटी ऑफ टेंडर्स।
1: अब मॉरिशस में ईंधन की सप्लाई की सुरक्षा टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी अनिश्चितता पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 5 सालों की गारंटीड सप्लाई कमिटमेंट पर आधारित होगी। ये कटिबद्धता मॉरिशस की पूरी आयात जरूरतों को पूरा करेगी। ये वास्तव में अपनी तरह का पहला समझौता है जो किसी भारतीय सरकारी तेल कंपनी ने दक्षिण एशिया के बाहर किसी देश के साथ किया है। भारत सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों को रिफाइंड पेट्रोली पैदावारों का निर्यातक भी हैं। हम इस क्षमता को सिर्फ अपना अधिकार नहीं समझते, हम इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, दुनिया भर में अपने दोस्तों और साझेदारों के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्थिर ऊर्जा स्रोत बनना।
3: We see it as a responsibility to stand as a dependable, transparent and stable source of energy.
1: डॉक्टर नवीन राम गुलाम के मुताबिक देश की ऊर्जा सुरक्षा की हिफाजत करने में ये रणनीतिक समझौता बड़ी अहमियत रखता है। वे बताते हैं,
2: Manifesting its unwavering commitment to the prosperity and resilience of Mauritius.
1: भारत एक बार फिर मॉरिशस की समृद्धि और मजबूती के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। दस्तखत किए गए ये समझौता राजनीतिक इच्छा शक्ति को ठोस और स्पष्ट परिणामों में बदलने के इरादे को दर्शाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ कि मॉरिशस और भारत के बीच के विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जाएगा। ये साझेदारी हमारे साझा इतिहास, हमारे मूल्यों और आपसी भरोसे जैसे मजबूत स्तंभों पर आधारित है।
2: On solid anchors of history, shared values, trust and solidarity.
1: भारतीय प्रधानमंत्री के मिशन के दौरान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बात करने तथा ग्रीन ऊर्जा की ओर परिवर्तन पर चर्चाएं हुई।
0: मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच

0: कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में व्यापार मंत्री माइकल सिक्वियन ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के मुद्दे पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार समझौते में ये प्रावधान है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकती है। इसके अलावा हर वर्ष समझौते की शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के लिए भी एक अवसर रखा गया है। इस संबंध में माइकल सिक्वियन ने अपना विचार दिया और तलब है कि ये साझेदारी केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है, इसके तहत जैव ईंधन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग का रास्ता खुलेगा, जिसमें करीब 20 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक परियोजना भी शामिल है। अन्य खबरों में, सऊदी अरब की दमम जेल में ड्रग के एक मामले में बंद मॉरिशस के एक नागरिक गणेशन एलन से रविवार को सऊदी अरब में मॉरिशस के राजदूत गियाद हलमत ने मुलाकात की। ये मुलाकात सऊदी अरब में कानूनी या प्रशासनिक मुश्किलों का सामना कर रहे मॉरिशस के नागरिकों को मॉरिशस दूतावास की ओर से दी जाने वाली कौंसुलर सहायता के तहत हुई। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि गणेशन एलन को हिरासत में रखने के दौरान उनके अधिकारों और आवश्यक परिस्थितियों का उचित रूप से पालन किया जा रहा है। वहीं गणेशन एलन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रामावालाइडेन ने महत्वपूर्ण सहायता के अभाव पर अफसोस जताया है और कहा है कि वह मामले में गिरफ्तार में लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल की बेगुनाही पर विश्वास है और उनका मानना है कि गणेशन एलन को इस मामले में फंसाया गया हो सकता है। ज्यादा जानकारी लुबीना सूफी की रिपोर्ट पर सुमेरा अकबरी के साथ।
1: On connaît Moonfen Rapo, il a plusieurs places, y compris Union européenne.
2: मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कई जगहों पर जा चुकी है। यूरोपीय संघ और सऊदी अरब को भी ये रिपोर्ट मिल गई है। सऊदी अरब में हमने एक वकील की सेवा ली जो उससे मिलने जाएंगे। बदकिस्मती से आज तक मुसलसल तौर पर कोई मदद नहीं मिली। दूतावास को अपना किरदार निभाना चाहिए, एक मुस्लिम नागरिक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चाहे उसका जो भी जुर्म हो, एक मुस्लिम व्यक्ति की प्रतिरक्षा की चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में मिस्टर एलन की बेगुनाही का उल्लेख किया है।
1: Donc nous devons faire bonne démarche, nous devons continuer à faire bonne démarche et mon fin rapport que pour démontrer là dans leur rapport là qui monsieur Yalan innocent. Et dans tout rapport qui mon fait, c'est pas premier rapport qui mon fait, mon prend depuis d'entier jusqu'à maintenant. Mon fait comme mon fait un rapport, c'est surtout pour démontrer qu'il y a un djimoun innocent et qu'il peut risquer ban miscarriage of justice, c'est-à-dire erreur judiciaire. Vous connaissez une affaire de drogue, mais c'est moi quand vous lisez le rapport pour que tu donnes différents langues.
0: खबरों को आगे बढ़ाती हैं। कारोबारी और सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध मुजफ्फर लाल मामूद, जिन्हें मूज के नाम से भी जाना जाता है, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिले में तलाशी जा रही है। कल उनके आवास पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए उनके साथ चलने से इनकार करने के बाद जब तक उन्हें आधिकारिक समन भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाती तब तक वह लापता हो चुके थे। गौरतलब है कि मुजफ्फर लाल मामूद को इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में उन्हें कोम्बे में 10 मिलियन मॉरिशन रुपए की कथित एक्सटोर्शन के प्रयास के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। लाहौजा में कल एक स्थानीय निवासी को कथित तौर पर गोली लगने से चोटें आई। उसे इलाज के लिए रोजबेल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला संदिग्ध व्यक्ति भी घायल हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। वहीं कल शाम बुबासा में मेट्रो की पटरियों के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव मिलने के बाद कुछ समय के लिए मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई। मौत की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत ब्रिटिश अमेरिकन एक्सचेंज के पूर्व मैनेजर 42 वर्षीय नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया है। गुडलैंड्स के एटलस रोड में स्थित उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां से करीब 2 लाख मॉरिशन रुपए और विदेशी मुद्रा सहित विदेशी मुद्रा की खरीद से संबंधित बी एक्सचेंज के दस्तावेज जब्त किए गए। जांच से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नीतीश

0: सिबारत ने कथित तौर पर ऐसे धन से विदेशी मुद्रा खरीदने में मदद की जिसके अवैध गतिविधियों से प्राप्त होने का संदेह है। इस काम में कई अन्य लोगों के कथित तौर पर शामिल होने की भी बात सामने आई है। नीतीश सिबारत से उनके वकीलों की मौजूदगी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई जिसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक अस्थायी आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज शुक्रवार 21 अगस्त को सुबह करीब 11:30 बजे पोटरी साउथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच के दौरान कई अन्य लोगों की भी पहचान हुई है जिनसे FCC द्वारा पूछताछ किए जाने की संभावना है। जांच जारी है और अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन के स्रोत का पता लगाने के साथ साथ इस मामले में अन्य संभावित लोगों की भूमिका निर्धारित करना है। इबन में तकनीकी नवाचार को समर्पित एक नए प्रयोगशाला ने आज अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये प्रयोगशाला खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को संवैधानिक ज्ञान से आगे बढ़कर उन्हें उसे व्यवहार में लागू करने और अपने खुद के प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। मॉरिशस में अपनी तरह की अनूठी बताई जा रही इस प्रयोगशाला की स्थापना मॉरिशस के अधिकारियों और गैर सरकारी संगठन स्टेम पावर के बीच सहयोग से हुई है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग, सृजन और नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में काम करेगी। ICT मंत्री अविनाश राम दोहल से बात की एनाबेल वुल्बे ने, विवरण गीता सरान का है।
1: इस सुसज्जित कमरे में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किट्स मौजूद हैं। ये प्रयोगशाला, जिसे मॉरिशस में अपनी तरह की अनोखी प्रयोगशाला बताया जा रहा है, मॉरिशस के अधिकारियों और स्टेम पावर नामक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से स्थापित की गई है। ये संगठन विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्टेम से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग, सृजन और नए विचारों को विकसित करने की जगह के रूप में काम करेगी। ICT मंत्री अविनाश राम दोहल कहते हैं, इस लैब में करीब 24 कंप्यूटर हैं जो एक सर्वर से नियंत्रित हैं, कई उपकरण हैं, ठेकेदार, टेक्नोप्रेन्योर, कॉलेज के छात्र और यूनिवर्सिटी के छात्र तथा खोजकर्ता अपनी पैदावारों की जाँच यहाँ करने आ सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को उन तकनीकों तक सीधी पहुंच देना है जिनके बारे में वे अक्सर पहले किताबों या केवल सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं। ये तरीका कुछ छात्रों को पहले से ही पसंद आ रहा है। इंपीरियल कॉलेज के लेक्शान जावन कहते हैं, इस लैब से छात्रों को लाभ होगा। जिनके पास विचार हैं, वे अपनी परियोजनाओं को साकार कर सकते हैं, लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध उपकरणों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ICT मंत्रालय में AI यूनिट के अधिकारी रामा कृष्णा मुडालिया कहते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम है, लोग एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, यहाँ आकर वे अपना काम कर सकते हैं, मार्गदर्शन मिलेगा, वे AI आर्टिफैक्ट्स रच सकते हैं और जीवन तथा समाज की समस्याओं से निपट सकते हैं। एबेन स्थित ये प्रयोगशाला छात्रों, टेक्नोप्रेन्योर और शोधकर्ताओं के लिए खुली रहेगी। फिलहाल ये सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली है और आने वाले समय में इसके समय को बढ़ाने की योजना है।
0: अगर मॉरिशस की खोज करना उसके इतिहास, संस्कृतियों और विरासत को बेहतर ढंग से समझने का भी एक माध्यम बन जाए तो इसी उद्देश्य से मॉरिशस कल्चर ट्रिप .mu नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कल रिजवी में मॉरिशस इंस्टीट्यूट एजुकेशन ऑफ एजुकेशन यानी MI द्वारा लॉन्च किया गया। मुख्य रूप से पोर्टलिस को केंद्र में रखकर तैयार किया गया ये प्लेटफॉर्म मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का एक नया अनुभव प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म पर्यटकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होगा, जिसका उद्देश्य संस्कृति और विरासत को सीखने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2022 में मॉरिशस की एथिक्स एजुकेशन फेलोशिप में भागीदारी से हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में मूल्यों पर आधारित शिक्षा को शामिल करना है। इस पर ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में गीता सुनारायण के साथ।
1: मॉरिशस, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और विरासत को जानना, साथ ही एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहना सीखना, यही उद्देश्य है मॉरिशस कल्चर ट्रिप का, जो मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा विकसित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

0: हैं। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में कई माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और छात्रों को शामिल किया गया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। ये परियोजना एथिक्स एजुकेशन फेलोशिप प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य नैतिक शिक्षा और वैश्विक नागरिकता से जुड़े मूल्यों को बढ़ावा देना है।
1: Il est important pour nous amener des enfants, ça amène field trip là aussi, parce que comme ça, ce qu'a visualisé, ce qu'a trouvé, ce qu'a expérimenté aussi, ça reste comme si gravé.
0: दूसरों का सम्मान करना, उनकी बात सुनना और अलग-अलग सोच और पहचान को स्वीकार करना, यही इस नई वेबसाइट के जरिए विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से एक शैक्षणिक साधन के रूप में तैयार किया गया है, ताकि बच्चों को एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने और दूसरों को बिना किसी पूर्व धारणा की समझने में मदद मिल सके। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की निदेशिका मीला देवी सिरतन दुसिया कहती हैं,
1: sa website là, ce n'est pas juste pour un guide touristique, c'est surtout pour qui ban enfants et ban les autres aussi, ban grands, ban adultes, ban professeurs, tout le monde, soit capable aller dans 21 sites pour lui qui n'y a manque.
0: इसका उद्देश्य इन सीखों के जरिए युवाओं को वैश्विक नागरिकता के लिए भी तैयार करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से MIE शिक्षा के केंद्र में नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना चाहता है और युवाओं को उनके रोजमर्रा के जीवन में इन मूल्यों के महत्व की याद दिलाना चाहता है। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद कहते हैं,
2: nous montrer qui mène l'éducation nationale l'y accès de développe ban valeur que nous ban enfants apprennent ça respect mutuel qui importe là vous êtes bien man citoyen pas seulement citoyen mauricien mais man citoyen du monde et je suis capable ne pas tout ça et je suis capable accepter
0: मॉरिशस को जानने समझने से आगे बढ़कर मॉरिशस कल्चर ट्रिप संस्कृति को दूसरों को बेहतर समझने का एक माध्यम बनाना चाहता है। MIE के लिए ये युवाओं तक ऐसे जरूरी मूल्य पहुंचाने का एक तरीका है, जिनके आधार पर एक अधिक सम्मानपूर्ण और सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज बनाया जा सके।
3: और उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताज़ा हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि यूक्रेन इस समय वायु रक्षा मिसाइलों की कमी का भी सामना कर रहा है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार रात भर हुए हमलों में राजधानी के विभिन्न इलाकों में कई अपार्टमेंट इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया। एक बच्चों के अस्पताल और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। कीव में क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट इमारत के बाहर से बातचीत में मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि यूक्रेन को गोला बारूद और मिसाइल रोधी प्रणालियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को अपने सहयोगी देशों से समर्थन चाहिए। बढ़ते मौसम संबंधी जानकारियों की ओर, आम हालत, पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय विशेषकर पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी देर के लिए वर्षा होगी। आंशिक तौर पर दोपहर बाद में विशेषकर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे और रहकर वर्षा होगी। शाम के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पार समुद्र सामान्य रहेगा। दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारे सहयोगी कादर का साथ मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की कुमारी डेजी रानी सिबन, जिन्हें आरती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे,

की मृत्यु भारत में हुई है. उनकी अर्थी उनकी मां चिंता सिबालक के घर बेलरीव से बाद में उठाई जाएगी. क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स. सिमेट्री रोड लिस्कालिये में, सिमेट्री रोड लिस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिजवंतीमाला ओमो, श्रीमती बिजवंतीमाला ओमो पैदाशनाम बलवाम और जिन्हें फिया के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे नाविसन ओमो के घर लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासकाओंग लिस्काली के शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे एट 1 PM. कॉन्फुक्रो ब्रांच रोड कास्टेल में, कॉन्फुक्रो ब्रांच रोड कास्टेल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परबावती लोबिन पैदाशनाम चुनिया और जिन्हें सोनिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे राकेश लोबिन के घर कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे 2:30 PM. लॉन्ग्लॉ स्ट्रीट थ्रोंगबो में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विजय लक्ष्मी बाचू पैदाशनाम जीवलाल और जिन्हें रानी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 12:30 बजे उनके पति ज्ञान बाचू के घर थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे एट नून. लाबोद स्ट्रीट बोआरूज पॉम्पलेमूसेस में, लाबोद स्ट्रीट बोआरूज पॉम्पलेमूसेस में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती यशोदा तिलक जिन्हें अनुराधा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर पॉम्पलेमूसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे एट 1 PM. अपार्टमेंट A28 तीसरे माले पर एनएचडीसी कॉन्लुव्यू में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री उदित नारायण बाबाजी जिन्हें कुमाऊं के नाम से भी ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर कॉन्लुव्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौदिगौद की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुडे 2 PM. वेस्लेन पियर सिमोनेट फ्लोरियाल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री जवदेश सिंह रामजीत जिन्हें साइलेश जाफिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल रात 10:30 बजे उनके बेटे दीपेश सिंह रामजीत के घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ली गई. फ्यूनरल लास्ट नाइट एट 10:30 PM. रॉयल रोड पोस्टी दिफ्लाक में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बालकारन सोनाराम जिन्हें महाराज के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे तीरथ कुमार सोनाराम के घर पोस्टी दिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुडे 2:30 PM. डर्बी स्ट्रीट फॉर साइड क्यूबिक में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री आरी गोपल जिन्हें आरी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 3:00 बजे उनके घर फोरेसाइड क्यू पिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे 3 PM. मार्केट रोड लाग्रीमेंट सेंपिया में 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रूपवंती ओबिलक पैदाशनाम भजन और जिन्हें दीदी मंजली के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर लाग्रीमेंट सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंसा सेंपिया की शमशान भूमि ले जाएगी. कमीशन टुडे 2 PM. एवेन्यू दी साबलों ग्रेनी फ्रांस में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज चितामन जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे. उनकी अर्थी अगले मंगलवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे फ्रांस में उनके घर से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 25 अगस्त एट 11 AM इन फ्रांस. कॉन्क्रेओल आल्बियो में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री रंजीत सिंह बायरू सिंह जिन्हें शेखर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बसंती बायरू सिंह के घर आल्बियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशल्यू पिस्त्रिविया की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे 2 PM. बॉम्बू स्ट्रीट मेबर्ग में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री वाल्मीकि देवी जिन्हें आनंद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले MPI में काम करती थी कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर मेबर्ग से उठाकर

0: अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबक की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेटरी एट 11 AM शनफील्ड रोड रिविया जोंगपा में। शनफील्ड रोड रिविया जोंगपा में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की बीबी सुलमा रोजीद पैदाश नाम बोला जिन्हें सुलमा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा कल रात 9 बजे इनके मकान रिविया जोंगपा से उठाकर दफनाने के लिए पुदलास्को का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल लॉस्ट नाइट एट 9 PM बियाला रोड कुतेज में। बिरला रोड कुतेज में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जीना टिकोई पैदाश नाम अलीगन और जिन्हें पूजा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति राजेश टिकोई के घर कुतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कागुआ कास्या कुतेज के शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन ट्री एट 1 PM मामजेल लोग तेरूज में 37 साल की 37 ईयर्स ओल्ड की श्री विराज बागुबन जिन्हें दू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी मां सीता बागुबन के घर तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन ट्री 10 AM कापोगाल रोड गुडलैंड्स में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्री जगदेश दामरी जिन्हें जगदेश जाग के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहूश गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुडे एट 11 AM एस एस ओ रोड कोचिमलितिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र तिलकधारी जिन्हें राजन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर कोचिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुडे एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Radio Musti.
2: Welcome to RM2.
1: Musti Mornings. Radio Musti. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
3: North, South.
2: 103.5.
3: East, West.
2: 96.4.
3: Center.
2: 99.4.
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Good morning, सभी को सुबह के 7:01 हुए हैं.
4: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.
5: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: सावन में लग गई आज सुबह सुबह सुबह सुबह आ रही हूँ मैं यार, मैं देख रही हूँ कि मौसम कितना सुहाना है, इतने सारे घने घने बादल। आई लव रेनी वेदर, लेकिन आपका पता नहीं ना कितने सारे काम पेंडिंग और उठने में इतनी कठिनाई हो जाती है, लेकिन आई जस्ट लव दैट फ्रीजी वेदर। और ये जो थोड़ा सा यू नो धुने धुने मौसम है, इसमें एनर्जी कुछ और होती है, यू नो सूरज की किरणों के साथ अलग एनर्जी होती है होती है और यू नो जो बारिश होती है उनकी भी अलग खासियत है। इट अफेक्ट्स योर डे, इट अफेक्ट्स योर स्टार्ट ऑफ द डे। वैसे आई जस्ट गिव यू द राइट वाइब्स हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। इट्स द ऑफ कोर्स मॉर्निंग बीट हियर। 7:06 हुए हैं फ्राइडे 21 अगस्त में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं मनीषमा, आपकी सखी, आपकी दोस्त। दो घंटों का सफर चल पड़ा, यानी कि बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे कुछ आपके साथ शेयर करनी है। Here we go.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat RM2
1: Radio Musty.

0: डांस करो, एंजॉय करो, यही तो मॉर्निंग का ये जो शो होता है कंपनी करने के लिए. वैसे गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल दोस ट्यूनिंग टू आवर इनटू रेडियो मस्ती.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए आप तो जानते हैं हर रोज हम सरप्राइज प्लान करते हैं आप सभी के लिए जो हमारे साथ हर रोज पार्टिसिपेट करते हैं. वैसे मौका है और मौका दे रहे हैं फॉर दोस सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे. इट्स अ सरप्राइज फ्रॉम लोलो हाइपरमार्केट. तो आपको क्या करना है कि स्पेशल पर्सन का जन्मदिन आज जो भी मना रहे हैं वो हम तक पहुँचा सकते हैं. वो उस इंसान का नंबर और नेम, जी हाँ, नाम, पता और फ़ोन नंबर जो कोई भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. नॉट फॉर योरसेल्फ एंड एनीबॉडी एल्स हु नोज यू नो कि आज उनका जन्मदिन है, उस खास इंसान का जन्मदिन है, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें. खुद का नाम, खुद का फ़ोन नंबर और द बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय का नंबर, नाम और पता, तीनों के तीनों यहाँ पर भेजना है आपको. और विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. तो शुरू हो जाए रजिस्टर राइट नाउ. हम एक लकी ड्रॉ करने के बाद आप तक पहुंचा देंगे द लकी विनर जो आज क्वालिफायर होंगे फॉर द स्पेशल हैप्पी बर्थडे.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
3: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipia pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
4: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu en vis avec Canal Plus inclus dans ton abonnement.
5: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
6: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month.
7: Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
8: Mmm, doux.
9: Ça veut dire que ça croustille.
8: Mmm, doux.
9: Ça veut dire que c'est spicy.
8: Mmm, doux.
9: Ça veut dire que c'est bon.
8: Mmm, doux.
9: Et ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le plaisir du croustillant et du goût dans une recette végétale. Les produits Douveji, disponibles en nuggets, émincés, panés et chunks. Douveji, c'est vraiment veggie good.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: आपका जन्मदिन अगर हो सके तो हर किसी का जन्मदिन, लेकिन ये जो वाउचर है सिर्फ एक ही लिए, एक ही इंसान के लिए होगा। और यहाँ पर हमने फोन किया है बर्थडे गर्ल को, उनका नाम है नितिशा सिद्धु। गुड मॉर्निंग।
4: Good morning.
3: How are you, Nitisha?
4: I'm good, fine. Thank you. How are you?
3: मैं ठीक हूँ। आपके आवाज से लग रहा है कि आप कितने खुश हुए। Actually, yes, a beautiful surprise, right? और यही तो हम चाहते हैं ना, हमारी जो listeners है कभी ना कभी खुश हो जाए। हमारे साथ यहाँ पर अनुष्का, नाइको, श्रिया और कीमी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। And from our MG Radio Musti, the whole team wishes you very happy birthday, my dear.
5: Radio Musti.
3: Oh yes, wish you a very wonderful, wonderful time. Lots of love and happiness and success in your life, my dear.
4: Thank you. Thank you so much.
3: Thank you for also always being here with Radio Musti. और आप कुछ share भी करना चाहते हैं तो हम सुनेंगे।
4: Can I speak in Creole?
3: Yeah, definitely. थोड़ा थोड़ा, then back to English, please.
4: Merci beaucoup, merci mon bébé, pas beaucoup, merci Camille, merci Tia, la famille entière.
3: Mm-hmm.
4: For so much love.
3: Thank you. That's a lot of love for you. Sorry, again?
4: Oh,
3: thank you. वैसे सुनिए, आपको मिल रहा है ये लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से ये वाउचर। कंग्रेचुलेशंस। आप कलेक्ट करके करने आ सकती हैं यहाँ पर 9 से लेकर 4 बजे के बीच। It's a voucher for you. Thank you. Have a wonderful day. Bye-bye. Very happy birthday guys to each and everybody celebrating their birthday. I'm so sorry ki aaj sabka ye surprise nahi kar payenge, lekin har roz ek insaan ko hum sochenge zarur. Aur yahan par ek lucky draw karne ka baat aap to jante hain. Register the all yes and then you participate every day. It's every day.
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: यहाँ पर ऑफ कोर्स इन दिस मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे मौके दिया जा रहे हैं फॉर यू गाइस टू पार्टिसिपेट एंड विन गिफ्ट्स या ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. तो चलिए एक सवाल हम करेंगे. एक्चुअली मैं ढूंढ रही हूँ एक वर्ड को, एक दिस वर्ड आई एम लुकिंग फॉर. हमेशा मैं एक ये गेम करती हूँ, आई एम लुकिंग फॉर वर्ड. तो वर्ड का ये जो डेफिनेशन है या तो मीनिंग मैं बताऊँगी आपको, सिर्फ वर्ड को गेस करना है कि किस वर्ड को हम ढूंढ रहे हैं. एंड यू कैन विन योर 40 मिनट्स ऑफ हाइड्रोग्लो फेशियल एट प्राना स्किन एंड लेजर क्लिनिक. जी हाँ, यहाँ पर अगर आप हमें बता सकते हैं कि जो वर्ड है एक्चुअली एक इंसान के लिए भी रिफर कर सकते हैं. नाउ यू टेल मी विच वर्ड आई एम लुकिंग फॉर. डेफिनेशन इज समवन हुज कंपनी यू एंजॉय, someone you trust with your thoughts and feelings, someone who stands behind you and encourages you, someone who genuinely wants the best for you, someone who supports you when you need help, someone you know you have a connection with sometime in a less personal way, someone with whom you share a strong emotional bond. Acha bataiye. मिल गया कितने सारे जवाब. ओके जी, आपको थोड़ा सा और टाइम दे देती हूँ. फुल नेम एंड एड्रेस के साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत ही आसान है. आई होप यू हैव वन इन योर लाइफ ऑल्सो.

0: Show. RM2.
1: Radio Musty.
2: एक्चुअली सारे के सारे जवाब आपने जो दिए हैं बहुत ही यू नो बेस्ट आंसर्स है एक्चुअली, लेकिन जो वर्ड मैं ढूंढ रही हूँ काफी कम लोगों ने सही जवाब दिया है. जी हाँ, आई एम सर्चिंग फॉर समवन हुज कंपनी यू एंजॉय, समवन यू ट्रस्ट विद योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, समवन हु स्टैंड्स बिहाइंड यू, एनकरेजेस यू, समवन हु जेन्युइनली वांट्स द बेस्ट फॉर यू, समवन हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू नीड हेल्प. A person, you know, when you have connection with sometimes in a less personal way. Someone with whom you share a strong emotional bond. Hum dost ko dhoond rahe hai. Yes, a friend. Aur ye jo friend hota hai na, alag alag disguise mein aa jaate hain hamari zindagi mein. Aur sare jo log ne sahi jawab diya hai, be it parent, be it your mom, be it your dad, be it your sister. Bas. रूप बदल कर हमारी जिंदगी में इतने सारे दोस्त आ जाते हैं. एंड दिस वन गोस आउट टू योर फ्रेंड, टू योर बेस्ट फ्रेंड. एंड कहते हैं ना, अ ट्रू फ्रेंड नोज योर वीकनेसेस, अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल, सेलिब्रेट्स योर सक्सेसेस, एंड स्टिल चूज टू स्टैंड बिसाइड यू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. कहते भी है ना, कमाना है तो दोस्ती कमाओ. हैव अ वंडरफुल डे. कांग्रेचुलेशंस हमारे लकी विनर को, उनका नाम है इखलास. The word I was searching is the word of friend. जी हाँ, आपको मिल रहा है ये 40 minutes of Hydra Glow official at Prana Skill and

0: Well, close your eyes and let the music take you on a journey filled with melodies, memories, and the timeless voice of Shan. And now RM2 Radio Masi is giving you the chance to experience this magic live. Play with RM2 Radio Masi and stand a chance to win a VIP ticket to assist the spectacular Shan live concert. One voice, one stage, one unforgettable night at SBICC on the 5th of September 2026 as from 8 PM, proudly organized by ticketbox.mu. तो चलिए जी, आप सुन रहे हैं RM2 Radio Masti. सवाल ये रहा आप सभी के नाम to participate with us on RM2 Radio Masti. You got here the chance of 549 and 1294 पर और जीतिए ये VIP ticket. तो बता सकते हैं कि आप where will Shan concert take place on the 5th of September 2026? Where will Shan concert take place on the 5th of September 2026? Is it A, SBICC Pi? Is it B, Triano? Or is it C, Kodo? बताइए द राइट आंसर ऑन 549 and 1294 पर. एक नजर डालते हैं अभी के लिए हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया में.
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: Good morning to you, Arvind ji.
4: Good morning, aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. जिसका बहुत दिनों से इंतजार था वो घड़ी आ गई. इंग्लैंड का प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 सीजन 2026-2027 आज से शुरू होगा. ओपनिंग आर्सेनल के एमिरेट्स स्टेडियम में, जहां दो चैंपियन आमने सामने होंगे. एक प्रीमियर लीग का डिफेंडिंग चैंपियन आर्टेटा का आर्सेनल और दूसरी ओर फ्रैंक लैम्पार्ड प्रीमियर लीग में वापस आ रहा है अपनी लीग चैंपियनशिप की चैंपियन टीम कोवेंट्री के साथ, जहां आर्टेटा की टीम फिर से फुल तैयारी के साथ प्रीमियर लीग टाइटल जीतने उतरी है. वहीं पर फ्रैंक लैम्पार्ड ने कहा कि प्रीमियर लीग में टिके रहना उसका पहला मिशन है. कम्युनिटी शील्ड वाले मैच में जिस बेरहमी के साथ आर्सेनल ने सिटी की धुलाई की थी, बाकी टीमों को थरथरी हुई होगी. जहां तक बीबीसी स्पोर्ट्स के 26 फुटबॉल पंडितों में से 23 प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आर्सेनल ही चैंपियन बनेगा. दि गनर्स के स्क्वाड को और मजबूत बनाया गया है, बनाया जा रहा है. 26 साल बाद कोवेंट्री प्रीमियर लीग में आई है. एमिरेट्स में सेवा सत्कार तो होगा जरूर. सो आज रात आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री, कल अर्ली किक ऑफ हल सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद एवर्टन क्रिस्टल पैलेस, इप्सविच टाउन सन्डरलैंड, नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स, ब्रैडफोर्ड टोटनहम हॉटस्पर. परसों संडे मैच ब्राइटन एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी बोर्नमुथ, न्यूकासल यूनाइटेड लिवरपूल का स्वागत करेगा 7:30 किक ऑफ. और मंडे मैच फुलहम वर्सेस चेल्सी. यूईएफए यूरोपा लीग के प्ले ऑफ के फर्स्ट लेग में कल काफी भारी स्कोर रहे. एंडरलेक ने कोई खैरियत नहीं छोड़ी, कायरात को 3-0 से हराकर. यागलियोना 4 इबेरिया 0, जाल्बी 0 रेड बुल साल्सबर्ग 1, बेसिक्टास 3 कोनो जाल्गिरिस 0, इग्नासिया 0 लिलस्ट्रोम 0. लेच पोजनर ने तन तनातन टून को तोड़ा 7-0 से. ट्राबजोंस्पो 0 फेरेनबारोस 1, क्रायोवा 1 अरारात आर्मेनिया 1, ओएफआई 3 सीएसके मोस्को 0. रेड स्टार बेलग्राद ने 3-0 से विक्टोरिया प्लाजेन को हराया. तो सीट क्रूडन 1 ओमोनिया निकोजिया 0, बेनफिका 3 एजीएफ 1. कॉन्फ्रेंस लीग में ब्राइटन ने अपना मैच ड्रॉ किया 0-0 ट्रोम्जो के खिलाफ. मोनाको ने एवे जाकर गोनिक जाबरे टीम को 3-2 से हराया. काराबाग की जीत 20 के यहां

0: 0 से सियों 2 आयाक्स 4, अटलांटा 0 अपोएल तेल अविव 0, मदरवेल 1 फ्रीबर्ग 3, रेंजर्स की जीत याब्लोनेक पर 1-0 से रेताफे ने 3-1 से पार्टिजान को हराया। लाने मिडजीलैंड नॉर्थजीलैंड बोकाक लुगानो स्पोर्टिंग ब्रागा की जीत, बाकी मैच ड्रॉ। इंग्लैंड के लीग वन में शेफील्ड वेनेसडे 0 ब्राडफोर्ड सिटी 1, स्पेन के ला लीगा में ड्रॉ मैच रायो वालेकानो 1 अलावेज 1। आज के कुछ अन्य फिक्स्चर्स, ला लीगा में रियल बेटिस वर्सेस रियल सोसिएदाद, फ्रांस के लीग वन में मार्सेई वर्सेस स्ट्रासबूर। फ्रांस न्यूज, लिवरपूल ने ब्राइटन के विंगर यांकुबा मिंटे के लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, पर ब्राइटन ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, दाम कम है, बढ़ाओ नहीं तो नॉट फॉर सेल। द रेड्स अभी तक बाकोला का इंतजार कर रहे हैं, पर पेरिस सेंट जर्मेन उसे बेचना नहीं चाहता सस्ते में, कम से कम 140 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मांग रहा है, जबकि लिवरपूल 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड 366 रन बनाकर खेल रही है 8 विकेट के नुकसान पर, मतलब पाकिस्तान से 195 रन आगे, अ लीड ऑफ 195 रन विद 2 विकेट्स लेफ्ट। साइकिलिंग, ग्रेट ब्रिटेन 2 के ओवरऑल रैंकिंग में किम्बर्ले कुपियना तीसरे स्थान पर आ गई हैं। किम्बर्ले लीडर से 14 सेकंड पीछे हैं। पहले 2 स्टेज में नेदरलैंड्स के लोरेना वेबेस की जीत हुई थी। घुड़दौर 13th रेस मीटिंग जो कल लगने वाली थी अब परसों संडे को लगेगी। मेन रेस डिमोरिशस डर्बी है, ग्रुप 1 रेस 1850 मीटर में। आज दिन के दौरान ऑफिशियल रेस कार्ड्स निकाले जाएंगे। इधर रीजनल फुटबॉल में रोशनोर स्पोर्ट्स क्लब दुदला बीमा सुवेनियर कप के लिए इस संडे को मैच होगा गुडलैंड्स की स्काईलॉक और सिलेक्शन कोटेज के बीच। सो दैट्स इट, वेलकम प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027। आज इट्स आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री। आप भी अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए और फुल सपोर्ट हमारी ओर से, चाहे रेडियो हो चाहे टीवी हो। You'll be getting the best of the Premier League हमारे साथ। Take care, bye bye, have a wonderful weekend ahead. Bye.
1: Bye bye. Thank you so much, Arvindji, for all the updates.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Jumbo, Quality Deco fin l'osso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds potiers 100 roupies. Des pieds pour 4 pieds potiers 295 roupies. Granit, 8 pieds pour des pieds 2000 roupies. Lavoir potiers 3500 roupies. SPC flooring, l'ordoise, luminaire, sanitaire, robinetterie. Et plaisir les autres produits à bas prix incroyable mais vrai. Promotion là, 10 pour des semaines seulement. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook Quality Deco.
4: A good beat for your morning show. James.
5: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो अभी जीत गया. यहाँ पर हमारे साथ हमारे लकी विनर है फॉर द क्वेश्चन आई आस्क कि वेयर विल शान कंसर्ट टेक प्लेस ऑन द 5th of September 2026. को बताना था आपको एड्रेस वेयर द कंसर्ट विल टेक प्लेस एंड द राइट आंसर इज SBICC 5 ऑफ कोर्स. हमारे साथ हमारे लकी विनर है. कंग्रेचुलेशंस गोज आउट टू कौन है जो जीतती है ये VIP टिकट. उनका नाम है तन्वी जो रहती है कैटरबॉर्न. तन्वी कंग्रेचुलेशंस. VIP ticket to assist the spectacular Shan live concert here in Mauritius at SBICC Pi on the 5th of September as from 8 PM. Proudly organized by the ticketbox.mu. वैसे शान के बारे में कुछ हम बताएं. वैसे शान इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो इंडियाज मोस्ट बिलव्ड प्लेबैक सिंगर्स नोन फॉर हिज स्मूथ सोलफुल एंड वर्सटाइल वॉइस. ही रोज टू द प्रोमिनेंस इन द लेट 90s एंड बिकेम अ फैमिलियर वॉइस इन बॉलीवुड थ्रू रोमांटिक मेलोडिक एंड फील गुड सॉन्ग्स. ओवर द इयर्स शान हैज डिलीवर्ड न्यूमरस मेमोरेबल हिट्स अक्रॉस इंडिया हिंदी सिनेमा एंड इंडियन पॉप म्यूजिक earning a strong fan following across generations. His warm vocal style, effortlessly, stage presence, everybody, you know, and the ability to connect emotionally with the audience have made him very, very popular and a very popular live performer also. Enjoy the charismatic energy, soulful voice and timeless melodious voice of Shan live on SBICC stage on the 5th of September as from 8 PM. Congratulations again. Later we click shortest break and then we'll be back with Anjana and Johnny ki kahani.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Moments that matter with Seekum. सबसे जोली परियोजना अक्सर शुरू होएला एगो निर्णय से. नवा गाड़ी लेके अपन कारोबार के आगे बढ़ाए के अपन भविष्य के मजबूत बनाए के या फिर आज ऐसा जीवन चुने के जोन पर्यावरण यानी लॉन्विहोन खातिर बेहतर हो. सिकोम तोहर सब परियोजना के आगे बढ़ाई में साथ दिवेला. हमने दिने से देवल जाए होला होम लोन आर लीसिंग के कई गो उपसों बा जोन तोहरा पर्यावरण यानी लॉन्विहोन पर कमती असर डाले में तोहरा प्रोत्साहित करेला जेकर से आई होला पीढ़ी खातिर भी एगो निमन आर बेहतर काल बनाए सकबा. हमने के वित्तीय समाधान तोहर सपना तोहर जीवन के सब फैसला आर उस सब पल में तोहर संगी बा जोन तोहर खातिर सबसे जस्ती मायना रखेला. सिकोम एगो ऐसन साथी है जेकर लगे हर जरूरत के समाधान है. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा. सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
4: It was moments that matter with Seekum.
5: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrées directement chez toi grâce à Deliveroo et Oda Manzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, mais commandé, nous amener. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
6: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
7: Tech Mag, powered by 365. Bien plus encore.
8: Artificial intelligence isn't just helping people write emails or generate images. It's also transforming the search for new medicines. Traditionally, developing a new drug can take many years. Today, AI can analyze millions of chemical compounds in a fraction of the time, helping researchers identify the most promising candidates much faster. Scientists still carry out the laboratory testing, but AI is becoming a powerful

0: वैसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार हैं, मिलते हैं अगले आवर में, लेकिन इतने सारी गुड वाइब्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, ये मनीषमा का साथ.
1: RM2 Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: घर ही मिला ले जा फजीर के 8 बजे तक. आठ बजे की भोजपुरी समाचार में सब कोई के स्वागत कर रहे जाता है, सब कोई के नमस्ते या प्रणाम. सबसे आगे हमनी आज सुख के ये भोजपुरी समाचार के शुरू करब जा हमनी के देश के समाचार संगे. जैसे जाना था मॉरिशस पेट्रोल उत्पाद के मंगवाई खातिर यानी कि आपूर्ति सुरक्षित करे खातिर भारत सरकार संगे एगो समझौता कर ली बाटे. पोर्टवे समय काल हस्ताक्षर करगल ई सरकारी समझौता देश के ऊर्जा सुरक्षा के मजबूत करे खातिर दीर्घकालिक सहयोग के ढांचा भी तैयार करता. मॉरिशस भारत के बीच काल हस्ताक्षर करगल ई समझौता ज्ञापन के चलत पेट्रोल के दाम के लेके भी बतियाए के गुंजाइश रखल गल. व्यापार मंत्री माइकल सिक्वियन बोलन कि भू राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव हुई पर दोनों पक्ष फिनों से बतिया सकियन जा, जबकि हर बड़ी समझौता के शर्त पर फिनों से विचार करे के भी अवसर रही. दूसरा समाचार में सऊदी अरब के दमम जेल में बंद मॉरिशस के एगो नागरिक गानेशन एलन से मॉरिशस के राजदूत भेंट करलन. ड्रग के एगो मामला में हिरासत में लेवल गल एलन के कानूनी स्थिति और जेल में उकर परिस्थिति के जानकारी लेवल गल, जबकि उकर वकील गमा वालाइदेन उनकर बेगुनाही पर भरोसा रखत हवन. एबेन में तकनीकी नवाचार के बढ़ावा दे खातिर एगो नवा प्रयोगशाला के उद्घाटन करेगल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक से लेस ई प्रयोगशाला के उद्देश्य मॉरिशस के युवा के अपन विचार के व्यवहारिक रूप दे के या नवा प्रोजेक्ट विकसित करे खातिर ई एगो अवसर दे के है. अर्जुन खबर अभी चर्चा में बाटे. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एगो हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिला में कारोबारी या सोशल मीडिया पर जानल मानल मुजफ्फर लाल मामूद जिनकरा मूज के नाम से भी आदमी जानल जा ओकरा खोजल जाता. काल ओका घर पर जांच अधिकारी लोग कार्रवाई खातिर गल रलन जा पर पूछताछ खातिर ओके संगे चले के बोलल गल तब उ इनकार कर देलक. एकर बाद आधिकारिक समन जारी करे से आगे उ काजनी कहाँ पर लापता हो गल उ भाग गल. लागोजा में माटी के एगो अनबन के लेके कथित गोलाबारी के एगो मामला होल बाटे. ई में एक जना के घाव लगल जबकि एगो संदिग्ध हमलावर के भी घाव लगे के समाचार मिलल बाटे. हुए परी बोबासे में मेट्रो लाइन के भीड़ एक जना के शव मिलल बा जेकर पर घाव के निशान लगल रहल, उकर गला पर निशान लगल रहल और उकर मौत होल बा. ई मौत के वजह जाने खातिर आज एगो पोस्टमार्टम करल जाए. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में यानी कि एगो मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में आर एगो बयान सामने आल बाटे. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी एगो जांच में बीए एक्सचेंज यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन एक्सचेंज के एगो पूर्व मैनेजर जोन 42 बरिस के नीतीश सिवारथ ओके पकड़ल गल बाटे. ओकर पर आरोप लगावल गल बाटे जबकि ओकर घर में जहां उ रहेला गुडलैंड्स में हुआ पर तलाशी करगल जिका दौरान लगभग 2 लाख रुपया विदेशी मुद्रा संगे कई गो दस्तावेज भी जब्त करगल. जांच के मुताबिक उकर पर कथित तौर पर अवैध गतिविधि से मिलल धन से विदेशी

0: દ્રાકીને મેં મદદ કરે કે આરોપમાં આ મામલા મેં કઈગો આ દુસર જના સે પૂછતાછ ભી કર જાય। दूसरे देश के समाचार में रूस के ताज़ा मिसाइल हमला में यूक्रेन के राजधानी कीव में कमती से कमती 15 जना के मौत हो गल बाटे जबकि कई गो इमारत और ठिकाना के नुकसान होल बा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बोले हवन कि जब ले देश लगे पर्याप्त एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं हुई तब ले रूस गंभीरता से शांति के बारे में नहीं सोची। तही के संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से सुन लो का खातिर धन्यवाद। अभी 8:04 हुआ था।
1: RM2 रेडियो मस्ती मॉर्निंग बीट अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: सुंदर परी ये थी आपके लिए गिरीश रूपचंद की आवाज में. अभी के लिए पता करते हैं हम मौसम का हाल. वेलकम इन द सेकंड आवर.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ऑन इट टू स्विनर्स.
3: मौसम का हाल. आम हालत पूर्व से आने वाली कुछ बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगी अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है. सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी वर्षा होगी. आंशिक तौर पर दोपहर बाद में विशेषकर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होगी. शाम के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से डोमीतर के जुआर उठेंगे. तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 5:58 पर.
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de jus de fruits Les Vergers de la Bourdonnée à 122,95 € et les 320 ml de Vaseline Body à 219,95 €. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners!

0: बजकर 25 मिनट हुए हैं एंड आई एम जुड़े हियर टू रेडियो मस्ती मैसेजेस डेडिकेशंस हैव अ वंडरफुल डे बहुत सारे गुड डे हैव अ वंडरफुल टाइम वो वीकेंड यस हैव अ वंडरफुल वीकेंड आल्सो टू यू टू. Have a wonderful time, of course. Listen to RM2 Radio Masti. बस थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं कोट ऑफ द डे एंड आप जुड़े रहिए हमारे साथ और थोड़ी देर में स्पोर्ट्स अपडेट्स भी आने वाले हैं फॉर दोज हू हैव मिस्ड आउट ऑन द साढ़े सात बजे की न्यूज. ओके यहाँ पर आप बस एंजॉय करते रहिएगा हमारे साथ यू ही बस मस्ती भरे गाने आप सभी के नाम.
1: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: 8:29 हुए हैं। Let's have the sports recap.
1: Sports news.
2: Radio Musti in the mix.
3: जिसका बहुत दिनों से इंतजार था वो घड़ी आ गई। इंग्लैंड

द प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 सीजन 2026-2027 आज से शुरू होगा। ओपनिंग आर्सेनल के एमिरेट्स स्टेडियम में, जहां दो चैंपियन आमने सामने होंगे, एक प्रीमियर लीग का डिफेंडिंग चैंपियन आर्टेटा का आर्सेनल और दूसरी ओर फ्रैंक लैम्पार्ड प्रीमियर लीग में वापस आ रहा है

0: धुलाई की थी, बाकी टीमों को थरथरी हुई होगी। जहां तक बीबीसी स्पोर्ट्स के 26 फुटबॉल पंडितों में से 23 प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आर्सेनल ही चैंपियन बनेगा। दि गनर्स के स्क्वाड को और मजबूत बनाया जा रहा है। 26 साल बाद कोवेंट्री प्रीमियर लीग में आई है, एमिरेट्स में सेवा सत्कार तो होगा जरूर। सो आज रात आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री, कल अर्ली किक ऑफ हल सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद एवर्टन क्रिस्टल पैलेस, इप्सविच टाउन सन्डरलैंड, नॉटिंगहम फॉरेस्ट लीड्स, ब्रैडफोर्ड टोटनहम हॉटस्पर, परसों संडे मैच ब्राइटन एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी बोर्नमुथ, न्यूकासल यूनाइटेड लिवरपूल का स्वागत करेगा 7:30 किक ऑफ, और मंडे मैच फुलहम वर्सेस चेल्सी। यूईएफए यूरोपा लीग के प्ले ऑफ के फर्स्ट लेग में कल काफी भारी स्कोर रहे, एंडरलेक ने कोई खैरियत नहीं छोड़ी, कायरात को 3-0 से हराकर, यागलियोना 4 इबेरिया 0, जाल्बी 0 रेड बुल साल्सबर्ग 1, बेसिक्टास 3 कोनो जाल्गिरिस 0, इग्नासिया 0 लिलस्ट्रोम 0, लेच पोजनर ने तन तनातन टून को तोड़ा 7-0 से, ट्राबजोंस्पोर 0 फेरेनबारोस 1, क्रायोवा 1 अरारात आर्मेनिया 1, ओएफआई 3 सीएसके मोस्को 0, रेड स्टार बेलग्राद ने 3-0 से विक्टोरिया प्लाजेन को हराया, तो सीट ट्रूडन 1 ओमोनिया निकोजिया 0 बेनफिका 3 एजीएफ 1। कॉन्फ्रेंस लीग में ब्राइटन ने अपना मैच ड्रॉ किया 0-0 ट्रोम्जो के खिलाफ, मोनाको ने एवे जाकर गोनिक जाबरे टीम को 3-2 से हराया, काराबाग की जीत 20 के यहां 1-0 से, सियों 2 अयाक्स 4, अटलांटा 0 अपोएल तेलावी 0, मदरवेल 1 फ्रीबर्ग 3, रेंजर्स की जीत याब्लोनेक पर 1-0 से, रेताफे ने 3-1 से पार्टिजान को हराया, लाने मिजिलान नॉर्थजीलैंड बोकाक लुगानो स्पोर्टिंग भागा की जीत, बाकी मैच ड्रॉ। इंग्लैंड के लीग वन में शेफील्ड वेनेसडे 0 ब्राडफोर्ड सिटी 1, स्पेन के ला लीगा में ड्रॉ मैच, रायो वालेकानो 1 अलावेज 1। आज के कुछ अन्य फिक्स्चर्स, ला लीगा में रियल बेटिस वर्सेस रियल सोसिएदाद, फ्रांस के लीग वन में मार्सेई वर्सेस स्ट्रासबूर। फ्रांस न्यूज, लिवरपूल ने ब्राइटन के विंगर यांकुबा मिंटे के लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, पर ब्राइटन ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, दाम कम है, बढ़ाओ नहीं तो नॉट फॉर सेल। द रेड्स अभी तक बाकोला का इंतजार कर रहे हैं, पर पारी सेंट जर्मेन उसे बेचना नहीं चाहता, सस्ते में कम से कम 140 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मांग रहा है, जबकि लिवरपूल 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड 366 रन बनाकर खेल रही है 8 विकेट के नुकसान पर, मतलब पाकिस्तान से 195 रन आगे, अ लीड ऑफ 195 रन विद 2 विकेट्स लेफ्ट। साइकिलिंग, ग्रेट ब्रिटेन 2 के ओवरऑल रैंकिंग में किम्बर्ले कुपियना तीसरे स्थान पर आ गई हैं, किम्बर्ले लीडर से 14 सेकंड पीछे हैं, पहले दो स्टेज में नेदरलैंड्स के लोरेना वेबेस की जीत हुई थी। घुड़दौड़ 13th रेस मीटिंग जो कल लगने वाली थी अब परसों संडे को लगेगी, मेन रेस द मॉरिशस डर्बी है, ग्रुप वन रेस 1850 मीटर में, आज दिन के दौरान ऑफिशियल रेस कार्ड्स निकाले जाएंगे। इधर रीजनल फुटबॉल में रोशनो स्पोर्ट्स क्लब दुदला बीमा सुवेनियर कप के लिए इस संडे को मैच होगा गुडलैंड्स की स्काईलॉक और सिलेक्शन कोटेज के बीच। सो दैट्स इट, वेलकम प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027, आज इट्स आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री, आप भी अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए और फुल सपोर्ट हमारी ओर से, चाहे रेडियो हो चाहे टीवी हो, You'll be getting the best of the Premier League हमारे साथ। Take care, bye bye, have a wonderful weekend ahead, bye.
1: Bye bye, thank you so much for the recap, Arvind ji.
2: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: चलिए जी अभी के लिए वेलकम फॉर द कोट ऑफ द डे। कहते हैं कि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, नए एनर्जी और नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती जाती तो रहती है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को किस एटीट्यूड के साथ, यू नो, एटीट्यूड के साथ फेस करते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी और हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर रास्ता डिफ़िकल्ट है तो इसका मतलब नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। समटाइम्स द हार्डेस्ट रोड्स लीड टू द मोस्ट ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस। आज स्माइल के साथ शुरुआत कीजिए, नेगेटिविटी को भगाओ, साइड करो और खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द डे बिकम्स, यू विल नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। ओके, बिलीव, ब्रीद, कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, कीप ट्यूनिंग टू हार्म टू रेडियो मस्ती, बिकॉज योर बेस्ट चैप्टर मे स्टिल बी वेटिंग टू बी रिटन। क्या कहते हो आप?
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: RM2, Radio Musty.

0: RM2, Radio मस्ती।
1: Senorita, चलिए अभी के लिए जाने का समय हो चला है। You take care, have a wonderful day। नीलमणि आ रही है वापस आपके साथ निभाने के लिए।
2: Bon courage। Y llega hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer।
3: Name samcha।

0: देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं अशिता रघु। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अशिता।
1: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आपसे लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करेंगे। मॉरिशस ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है। पोर्ट लुइस में कल हस्ताक्षरित ये सरकारी समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा भी तय करता है। मॉरिशस और भारत के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भी बातचीत की गुंजाइश रखी गई है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत कर सकते हैं, जबकि हर साल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार का भी अवसर रहेगा। सऊदी अरब की दमन जेल में बंद मॉरिशस के नागरिक गणेशन एलन से मॉरिशस के राजदूत ने मुलाकात की। ड्रग मामले में हिरासत में लिए गए एलन की कानूनी स्थिति और जेल में उनकी परिस्थितियों की जानकारी ली गई, जबकि उनके वकील गमावालाइडन ने उनकी बेगुनाही पर भरोसा जताया है। और ऐसे ही अन्य खबरों में, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की हाई प्रोफाइल जाँच के सिलसिले में कारोबारी और सोशल मीडिया हस्ती मुजफ्फर लाल महमूद उर्फ मूज की तलाश तेज कर दी है। कल उनके घर पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए साथ चलने से इनकार करने के बाद आधिकारिक समन जारी किए जाने से पहले ही वह लापता हो गए। और लाहौजा में जमीन विवाद को लेकर कथित गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि संदिग्ध हमलावर के भी घायल होने की खबर है। वहीं कल शाम बुबासे में मेट्रो लाइन के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, और मौत की सही वजह जानने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच में बीए एक्सचेंज यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन एक्सचेंज की पूर्व मैनेजर 42 वर्षीय नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गुडलैंड स्थित उनके घर की तलाशी में करीब 2 लाख रुपए और विदेशी मुद्रा समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच के मुताबिक उन पर कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन से विदेशी मुद्रा खरीद में मदद करने का आरोप है, और मामले में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने रिजवी में मॉरिशस कल्चर ट्रिप .mu नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को मॉरिशस के इतिहास, संस्कृति और विरासत को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के ताजा मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इमारत और अन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब तक देश के पास पर्याप्त एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं होगी, तब तक रूस गंभीरता से शांति के बारे में बात नहीं करेगा और ना ही सोचेगा। और चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि बुलेटिन के बाद, यानी कि हमारी बुलेटिन, इस बुलेटिन के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम में आप के लिए बात चर्चा है सेल बाय लेवी पर, और आज के लिए मुख्य मेहमान हैं वकील कपिल देव रघुनंदन, और कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी वेदिता राम खिलावन। तो इसी के साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Welcome to RM2.
4: Must be mornings, radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: दिन भर हो प्यारी बातें, वाला आपको वही ब्यूटीफुल सफर लिव कराने के लिए नर्मनी आ गई है 9 से 12। इट्स योर मस्टी मॉर्निंग शो, जहां पर गानों के साथ होगा आपका होरोस्कोप और बहुत सारे टिप्स। तो जुड़े रहना यही पर अनुभव को आज। अगर अभी आप पहुंच रहे हैं ऑफिस या फिर अभी रास्ते पर है, स्टे सेफ एंड कीप एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक दैट्स हैपनिंग आपके ही आर एम टू रेडियो मस्ती पर। Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: 9:20 हुए हैं. दिल का तो पता नहीं, लेकिन आज है मेंस ग्रूमिंग डे. एंड जेंटलमैन, ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ हेयर स्टाइल और परफ्यूम नहीं होता, थोड़ा स्किन केयर, नीट लुक और कॉन्फिडेंस भी जरूरी होता है. एंड भाई, मैं तो नेचुरली हैंडसम हूँ बोल के ग्रूमिंग स्किप मत करना. एफिट से इफेक्ट जरूर दिखाई देता है. सो आज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नर्मनी को सुनते रहिए, क्योंकि आपके लिए ढेर सारे टिप्स लाते रहेंगे गानों के जरिए. एंड ऑल्सो फॉर यू टू हैव

0: A great, great Friday. हम यहीं पर हैं आरएमजू रेडियो मस्ती पर.
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Mustie.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: इस हॉरोस्कोप टाइम में तो चलिए जानते हैं कि आज आपका फेवरेट कलर और नंबर कौन सा होगा. शुरुआत करते हैं वेदर.
2: एरीज मेष राशि.

0: आज एनर्जी तो भाई फुल ऑन रही, जो काम पोस्टपोन कर रहे थे आप फ्राइडे यानी को आज को फाइनली आप कहेंगे आज कर ही देते हैं यार। लकी कलर आज आपका है ऑरेंज और नंबर है 9।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए। कोई अनएक्सपेक्टेड प्लान या मैसेज आपका मूड बना सकता है। पैसा

0: किसी से बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है. और हाँ, गॉसिप को ब्रेकिंग न्यूज मत बनाना. लकी खिलाफ का है स्काई ब्लू और नंबर है 5.
1: कैंसर कर्क राशि.
0: दिल बोलेगा रिलैक्स करो, दिमाग बोलेगा काम करो, और आप बोलेंगे फ्राइडे भाई पहले कॉफी अच्छा है. या आज अपने लिए थोड़ा मी टाइम जरूर निकालिए. लकी खिलाफ का है पीच और नंबर है 2.
1: लियो सिंह राशि.
0: स्पॉटलाइट आज आप की है. वर्क हो या सोशल लाइफ, आपकी पर्सनालिटी को नोटिस किया जाएगा. बस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस का कजिन मत बना देना. लकी कलाब का है गोल्डन येलो और नंबर है 1.
1: वर्गो कन्या राशि.
0: आज प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन जरूरी है. जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से कम एक काम कंप्लीट करके वीकेंड में एंट्री मारो. लकी कलाब का है लैवेंडर और नंबर है 4.
1: लिब्रा तुला राशि.
0: फ्राइडे रोमांस और रिलेशनशिप्स के लिए स्वीट हो सकता है. किसी स्पेशल पर्सन से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का चांस मिल सकता है. सिंगल लोगो नोटिफिकेशंस चेक करते रहो. लकी कलाब का है रोजी पिंक और नंबर है 7.
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
0: आज इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग रहेगी. अगर दिल कह रहा है कि कुछ सही नहीं है तो थोड़ा पॉज लेना ही बेहतर है. हर मिस्ट्री सॉल्व करना जरूरी नहीं. लकी कलाब का है बरगंडी और नंबर है 8.
1: सजिटेरियस धनु राशि.
0: एडवेंचर मूड ऑन है. वीकेंड की प्लान से बन सकते हैं और स्पॉन्टेनियस आउटिंग का मूड भी है. बस वॉलेट को भी बता देना कि एडवेंचर बजट के अंदर है. लकी कलाब का है चौकवाज और नंबर है 3.
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
0: काम का प्रेशर हो सकता है लेकिन आज डिसिप्लिन आपको विनिंग पोजीशन में रखेगा. जो टारगेट आपने सेट किया है ना उसको फिनिश करके ही फ्राइडे को ऑफिशियली वीकेंड समझो. लकी कलाब का है चारकोल ग्रे और नंबर है 10.
1: एक्वेरियस कुंभ राशि.
0: आज कुछ हटके करने का मन न करेगा. नया आइडिया, नया प्लान या सिंपली रूटीन से एक ब्रेक आपका यूनिक अप्रोच किसी को इम्प्रेस कर सकता है. लकी कलाब का है इलेक्ट्रिक ब्लू और नंबर है 11.
1: Pisces, मीन राशि.
0: आज आपके इमोशंस थोड़े हाई हो सकते हैं लेकिन पॉजिटिव वाइब्स को प्रायोरिटी दीजिए. म्यूजिक, फ्रेंड्स और थोड़ा रिलैक्सेशन फ्राइडे का ये परफेक्ट कॉम्बो है. लकी कलाब का है समुद्री हरा और नंबर है 12. एंड दोस्तों याद रखिए, स्टार्स सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, असली मैजिक तो आपके एक्शंस में ही है.
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And that was a kinna sona gana, especially हमारे दोस्त प्राशेल के लिए जो इस वक्त connected है काम पर है लेकिन ध्यान और कान आरएम टू रेडियो मस्ती पर ही. वो कहते हैं कि उनका काम होता है वेरी हेक्टिक लेकिन आरएम टू रेडियो मस्ती सुनकर उसके मन को आता है सुकून. ग्लैड यू एंजॉयिंग प्राशेल. साथ में प्रिशा बादू भी साथ दे रही है. सारा बानो जी और अब्दुल जी को भी बड़ा सा हेलो. ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए. इट्स योर मस्ती मॉर्निंग शो विद नैमनी.
2: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस अब अपने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस सिलसिले में भारत सरकार के साथ एक समझौता तय

किया गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया आधिकारिक समारोह कल दोपहर पोर्ट लुइस में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और भारत की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। सरकार से सरकार के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन में मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये पहल एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को अधिक सुरक्षित बनाना है। वहीं भारत की पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मौजूद विश्वास और मजबूत संबंधों को दर्शाता है। मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच कल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में व्यापार मंत्री माइकल सिक्यूएन ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के मुद्दे पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार समझौते में ये प्रावधान है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने पर दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकती हैं। इसके अलावा हर वर्ष समझौते की शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के लिए भी एक अवसर रखा गया है। गौरतलब है कि ये साझेदारी केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है, इसके तहत जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग का रास्ता खुलेगा, जिसमें करीब 20 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक परियोजना भी शामिल है। एवन में तकनीकी नवाचार को समर्पित करने प्रयोगशाला ने आज अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये प्रयोगशाला खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस के युवाओं को संवैधानिक ज्ञान से आगे बढ़कर उसे व्यवहार में लागू करने और अपने खुद के प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। मॉरिशस में अपनी तरह की अनूठी बताई जा रही इस प्रयोगशाला की स्थापना मॉरिशस के अधिकार और गैर सरकारी संगठन स्टैम्प पावर के बीच सहयोग से हुई है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग सृजन और नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करीब आने के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने प्रांतों से अमरीकी शराब को फिर से सुपरमार्केट की अलमारियों पर उपलब्ध कराने को कहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताकारों की लगातार तीसरे दिन बैठक हुई, जबकि प्रस्तावित समझौते में कनाडा के स्टील, एल्युमिनियम और कारों के साथ साथ अमरीकी शराब को लेकर उठे विवादों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, हम सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बैतका रोड यूनियन पार्क में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहरलाल सिंह रामकेलावन, जिन्हें महेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे कैलाश रामकेलावन के घर यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागजानी रॉजबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। मोफे अचिल न्यू ग्रोव में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री त्रिभुवन तांगो, जिन्हें सुकराज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती किरण तांगो के घर न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रूट दे पॉम्प्लीमूस ला क्वाजी वाली दे प्रेट पोर्ट लुइस में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री दुर्गा लक्ष्मण, जिन्हें पाको के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके भाई विक्रम लक्ष्मण के घर रूट दे पॉम्प्लीमूस ला क्वाजी वाली दे प्रेट पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाली दे प्रेट की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: ओरी सफरिया, जरा हमसे भी बातें कर लिया करो। 5499194 पर आप अपने मैसेजेस, डेडिकेशंस भी सेंड कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। नर्मनी वापस आ गई है सेकंड आवर आपकी मस्टी मॉर्निंग में। फ्राइडे मॉर्निंग का समा 21st of August, क्या प्लान है अभी के लिए? आई नो कि आप में से कुछ काम पर पहुंच गए हैं और कुछ रेडी हो रहे हैं अपने अपने शिफ्ट के लिए, और मम्मियाँ हमारी लंच तैयार करने में बिजी है, तो वो

0: आज आपको ऐसे ही ट्यून्ड इन रहिएगा क्योंकि टिप्स आपके लिए लाती रहेगी नर्मनी गानों के बीचों बीच में. तो आप अभी के लिए इस नेक्स्ट गाने को एंजॉय कीजिए. आपके नाम करती हूँ ये वाला सॉन्ग.
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे दिल का तो पता नहीं, लेकिन आज मेंस ग्रूमिंग डे के साथ साथ आज हम मना रहे हैं पोएट्स डे। मतलब थोड़ा शायराना होना आज तो बनता है। तो फ्राइडे के नाम एक छोटी सी शायरी है जो मैंने लिखी है। फ्राइडे की सुबह हवा में है नशा, वीकेंड का इंतजार और मूड है जरा फिदा। आप भी आज किसी को एक ब्यूटीफुल लाइन है डेडिकेट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी पोएट्री किसी का पूरा दिन बना देती है। तो चलो एक काम करते हैं, आप भी कुछ स्पेशल लिख दीजिए और सेंड कीजिए हमें व्हाट्सएप पर 5499124 पर। देखते हैं कि आपके दिल में क्या क्या छुपा है।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: लुक तो सॉर्टेड हो गया, बस बीच ना मिले तो भी बीच वाली वाइब्स जरूर होनी चाहिए. सो हैप्पी हवाईयन शर्ट डे टू यू.
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. RM2
2: रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: शान और सुनिधि चौहान की आवाज में दैट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग थारे वास्ते यानी कि आपके लिए। वैसे लाइव कॉन्सर्ट के बारे में आप पहले से ही जानते हो जो कि होने वाला है ऑन 5 सितंबर ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेविटी जीरो। यस, शान विल बी लाइव इन मॉरिशस फॉर एन स्पेक्टेकुलर इवनिंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक इन नॉस्टैल्जिया। हाँ देवो, आपको मिल चुका है एज फ्रॉम 8 PM SVICC पाई पर। अभी के लिए मस्ती मॉर्निंग में मस्ती वाला वाइब साउंड गोइंग रखते हैं। इट्स नर्मनी 12 बजे तक फॉर यू।
2: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी का इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: ऐसा ही सेकेंड आवर भी बीत गया म्यूजिक और मस्ती के साथ. मिलते हैं कुछ ही देर में संक्षिप्त समाचार के साथ. अभी के लिए इस आखिरी गाने को एंजॉय करते हैं.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे अशिता नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत किया जाता है। कारोबारी और सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध मुजफ्फर लाल महमूद, जिन्हें मूज के नाम से भी जाना जाता है, FCC की एक हाई प्रोफाइल जांच के सिलसिले में तलाशी जा रही है। कल उनके आवास पर जांच अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन पूछताछ के लिए उनके साथ चलने से इनकार करने के बाद जब तक उन्हें आधिकारिक समन भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाती तब तक वह लापता हो चुके थे। गौरतलब है कि मुजफ्फर लाल महमूद को इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के

0: मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में उन्हें गॉम्बे में 10 मिलियन मॉरिशन रुपए की कथित एक्सटोर्शन के प्रयास के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। लाहौजा में कल एक स्थानीय निवासी को कथित तौर पर गोली लगने से चोटें आई, उसे इलाज के लिए रॉसबेल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला संदिग्ध व्यक्ति भी घायल हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। वहीं कल शाम बुबा समय मेट्रो की पटरियों के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव मिलने के बाद कुछ समय के लिए मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई। मौत की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में FCC की जाँच के तहत BA एक्सचेंज के पूर्व मैनेजर 42 वर्षीय नीतीश सिबारत को गिरफ्तार किया गया है। गुडलैंड्स के एटलस रोड में स्थित उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां से करीब 2 लाख मॉरिशन रुपए और विदेशी मुद्रा, साथ ही विदेशी मुद्रा की खरीद से संबंधित बी एक्सचेंज के दस्तावेज जब्त किए गए। जांच से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नीतीश सिबारत ने कथित तौर पर ऐसे धन से विदेशी मुद्रा खरीदने में मदद की जिसके अवैध गतिविधियों से प्राप्त होने का संदेह है। इस काम में कई अन्य लोगों के कथित तौर पर शामिल होने की भी बात सामने आई है। नीतीश सिबारत से उनके वकीलों की मौजूदगी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक अस्थायी आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज शुक्रवार 21 अगस्त को सुबह करीब 11:30 पर पोर्ट लुइस साउथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच के दौरान कई अन्य लोगों की भी पहचान हुई है, जिनसे FCC द्वारा पूछताछ किए जाने की संभावना है। जांच जारी है और अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन के स्रोत का पता लगाने के साथ साथ इस मामले में अन्य संभावित लोगों की भूमिका निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान में टोक्यो के उत्तर में स्थित शिनकामुमा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब कर्मचारी रेलवे लाइन के पास खरपतवार नाशक यानी पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रही थी और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन किया गया था या नहीं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, सुन पाएंगे शुभ समाचार। शुभ समाचार सुनिए। क्लेफोन नंबर एक फिनिक्स में 87 साल की 87 years old की बीबी आयशा हुसैन बकस, बीबी आयशा हुसैन बकस पैदाश नाम हुमाल दाऊ और जिन्हें आयशा के नाम से लोग ज़्यादा जानती थी, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 इनके मकान फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए फिनिक्स की मस्जिद ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। नंबर 20 एवेन्यू डॉविन कैट्रबोन में 44 साल के 44 years old के श्री यानिश अपादू जिन्हें यानिश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके पिता योगेन अपादू के घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: 11:09 हुए हैं. गुड मॉर्निंग. एक्चुअली और लास्ट आवर मस्ती में विद निर्मणी. दिन मस्त है ना. वेदर कैसा है आपके यहाँ? डू लेट अस नो. एंड आल्सो आपको कौन कौन से गाने सुनने का मन है इस फ्राइडे मॉर्निंग में. एंड वैसे मॉर्निंग भी जल्द ही कुछ मिनटों में मॉर्निंग से आफ्टरनून में बदलने वाली है. तो पार्टी मोड स्टार्ट हो रही है. यही पर जुड़े रहना आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही.
2: वेलकम टू आरएमजू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
3: Shan live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
0: RM2
1: Radio Mustache.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज वर्ल्ड पोएट डे है और पोएट्री की खूबसूरती ही यही है कि कभी कभी कुछ लाइन्स वो कह जाती है जो हम खुद शब्दों में नहीं कह पाते. एंड हमारे एक ब्यूटीफुल लिसनर ने हमें एक पोएट्री भेजा है. एंड इट गोज लाइक, लाइफ हमेशा उस तरीके से नहीं जाता है जैसे हमने प्लान किया है, लेकिन हर कदम मदद करती है टू अंडरस्टैंड. जो भी हम गिरते हैं उसी से हम उठना भी सीखते हैं, और छोटी सी आशा हमें हर सनराइज में मिलता है. क्या बात है, क्या खूबसूरत रिमाइंडर है ना. जिंदगी परफेक्ट प्लान के हिसाब से ना चले तो भी हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है, और हर सनराइज एक नई होप लेकर आती है. तो आज वर्ल्ड पोएट डे पर अगर आपके दिल में भी कोई लाइन है, कोई पोएम है, या वैसे कोई फीलिंग है जो शब्दों में ढालना चाहते हो, आप हमें ज़रूर भेजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी पोएम किसी का पूरा दिन ब्यूटीफुल बना सकती है. सो 5491294 पर डू नॉट हेजिटेट टू शेयर विद अस योर पोएम.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: It's 11:38. वैसे आपको पता है दोस्त, कल था वर्ल्ड मॉस्किटो डे. एंड आज हम टिप्स में आपके लिए लाए हैं प्रिकॉशन नाम की एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की चीज. मॉस्किटोज को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन घर के आसपास जो स्टैग्नेंट वाटर जमा होता है ना, उससे वो इनवाइटेड हो जाते हैं. तो अगर आपके यहाँ जमा हुआ पानी है तो फ्रीक्वेंटली आप उसे फेंक दीजिए. शाम के टाइम पर मॉस्किटो रेपेलेंट को यूज़ कीजिए, हो जाएगा उनका काम तमाम, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन मॉस्किटो का. गुड मॉर्निंग भाई, ज्यादा गहरा हो गया ना मॉस्किटो टॉक. तो गाना चला लेती हूँ आपके लिए. इट्स नमनी 12 बजे तक फॉर यू.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: इतने से प्यारे से गाने के साथ नमनी लेती है आपसे इजाजत, मिलेंगे कल फिर से, टिल देन स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड यहीं पर रहना कनेक्टेड, क्योंकि परी आने वाली है रेट्रो रिदम के साथ।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: listening to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check, exactly 12 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
7: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। वर्कर्स राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में संशोधन का काम जारी है और इन बदलावों को साल के अंत तक पेश किए जाने की उम्मीद है। इस सिलसिले में कल नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें प्रभावित प्रस्तावित संशोधनों की शुरुआती रूपरेखा पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। प्रस्तावित बदलावों में PRGF के कामकाज की समीक्षा, स्वतंत्र अनुशासन समितियों की स्थापना और नियोक्ताओं के दबाव से ट्रेड यूनियनों को अधिक सुरक्षा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि श्रम मंत्री गिजाउती ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया पिछले साल से ही शुरू हो चुकी थी और इसका आत्मा शांति की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने एक व्यापक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना में बीजों के उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी पहल के तहत अब पेल बीन्स की एक नई किस्म की खेती और खपत को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किस्म फेरिना या नुआ 45 के नाम से जानी जाती है। इसे बेहतर उत्पादन और आयरन की अधिक मात्रा के लिए चुना गया है। सरकार इन बीजों पर 75% सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के बाद बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध है। मॉरीशस अब अपने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस सिलसिले में भारत सरकार के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौते पर हस्ताक्षर

0: की आधिकारिक समारोह कल दोपहर पोर्टरिस में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। सरकार से सरकार यानी कि B2B के बीच हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन में मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये पहल एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को अधिक सुरक्षित बनाना है। वहीं भारत की पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मौजूद विश्वास और मजबूत संबंधों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख करते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार आज तड़के इस्लामाबाद के एक अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद वापस जेल भेज दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था कि स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के बाद 48 घंटे के भीतर इमरान खान को अस्पताल ले जाकर डॉक्टरों से उनकी जांच कराई जाए। ये अदालत की ओर से इमरान खान को मिली सबसे महत्वपूर्ण राहतों में से एक थी। उन्हें 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजा गया था। हालांकि इमरान खान इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं। अदालत के आदेश में उन्हें अस्पताल ले जाने के अलावा परिवार से मिलने की अनुमति देने की बात भी कही गई थी। कई महीनों से वह अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे। मंगलवार रात उनकी बहन आजमा खान ने जेल में उनसे मुलाकात की। सूचना मंत्री तरार के मुताबिक गुरुवार रात से शुक्रवार तड़के तक चली मेडिकल जांच के दौरान आजमा खान सभी चरणों में मौजूद रही। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Retro Rhythm. RM2. Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: And well friends, that time of the day जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके अपने पुराने गाने जिन्हें हम लेकर आते हैं इस टाइम पर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. तो वेलकम करते हैं आपका फ्राइडे आफ्टरनून है, इट्स 21st ऑफ ऑगस्ट. मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम. सो यहाँ पर कुछ प्यारे गाने आपके लिए, आपकी इस आफ्टरनून को सजाने के लिए. आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू टेक यू डाउन मेमोरी लेन. और ये जो मेमोरी लेन है वहाँ पर आपके कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज आपका इंतजार कर रही है. तो चलिए दोस्तों, हमारे म्यूजिकल हमसफर आप भी बन जाएं ऑन रेडियो मस्ती और साथ निभा रहे हमारे सभी लिसनर्स. यू कैन सेंड मी आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस हमारे वही मैजिकल नंबर पर जो है 5499-1294. मैजिकल नंबर इसीलिए क्योंकि यहाँ से सीधा डायरेक्ट दिल का कनेक्शन बनता है, आपके दिल का हाल पहुंच जाता है हम तक, वो भी बस इन सेकेंड्स. सो बस आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस और इसे हम सजाएंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ. शामिल होता हुआ ये गाना आप सभी के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ, फिल्म कुदरत और आवाज वन एंड ओनली लता मंगेशकर. चलिए दोस्तों, इस म्यूजिकल कारवां को आप भी एंजॉय करें. दिस वन गोज आउट आप सभी के नाम.

रेट्रो रिदम। सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499124। आई नो कि ये जो शो है इसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट है। जब भी ये गाने चलते हैं आप तो हो जाते हैं सुपर हैप्पी और आपके स्वीट मैसेजेस पहुंच जाते हैं ऑन 5499124। सो आज बॉम्बू से पोती हंसवी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उनके लिए स्पेशल विशेज कमिंग फ्रॉम नाना धनेश्वर, नानी सुनीता, पापा ऋषि है, मामा मीना, भाई तहान, दादी माला, मामू अश्विन, मामी कुसुम, बियाना एंड भाविका ऑल्सो, सभी देवदास एंड सनीचर परिवार उन्हें विश करना चाहते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे। सो गुड गुड विशेस ऑन योर स्पेशल डे स्वीट हार्ट। गाना आपके नाम एंड सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू। साथ ही यहाँ पर जाना जी फ्लैग से कहती है, मैं तो बात कर रही हूँ आपसे, गानों को सुन रही हूँ, बातें सुन रही हूँ और काम कंट्रोल कर रही हूँ। सो दैट्स रियली नाइस, काम करते हुए आप भी गानों को एंजॉय कर रही हैं, गाना डेडिकेट कर रही हैं फॉर ऑल योर लव्ड वंस। रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिवसरण परिवार फ्लॉम फ्रैक का हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। गाना होगा आपके नाम एंड बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की ओर से। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और विश्वानी जी भी आई हैं, कहती हैं मैं हूँ विश्वानी दोमन ऑफ वाकवा और लंच ले रही हूँ और बढ़िया बढ़िया गाने एंजॉय कर रही हूँ। चलिए सो आप खुश तो हम भी खुश, एंजॉय योर लंच। अगला गाना आपके नाम। साथ ही यहाँ पर आपकी बहनें हैं इंदिरा, शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शुभा और सभी के लिए आप डेडिकेट कर रही हैं एक प्यारा सा गाना। सो एवरीवन हुज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, नए हो या फिर पुराने, हर गाने का टेस्ट आप तक हम पहुंचाते हैं ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। अभी के लिए इट्स टाइम जहां पर 70s, 80s, 90s के कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स हम आपके लिए चलाएं। That's your retro rhythm on the waves of Radio Masti. परी का साथ है दिन के 4 बजे तक।

0: Retro Rhythm.
1: Beautiful songs and that's your retro rhythm. गाना होगा फोनानी माधुरी सेवक आलिब्रियो रहती हैं और साथ में है मामा गुलवंती लीलू और साथ में पत्नी सभी आपके परिवार सभी आपके अपनों के नाम विशाल रामदास भी साथ दे रहे हैं और नलिनी रामदास हमारा साथ दे रही हैं आप सो गाना फॉर यू फॉर ऑल योर लव्ड वन साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन रेडियो मस्ती और कहते हैं कि ये जो प्यारा मोमेंट है इसे बस हम कैप्चर कर रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को हम एंजॉय कर रहे हैं अंजलि लक्ष्मी शिवानी ट्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं सो गाना आप सभी के नाम एंड लीला है फ्रॉम लीना जी है फ्रॉम प्लेन द हॉर्स और एक प्यारा सा गाना फॉर लिटिल प्रिंसेस जिया आपके हस्बैंड राजीव और सभी आपके टीममेट्स जो इस वक्त हौशनुमा में काम कर रहे हैं एट रेस्टोरेंट और उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज सभी शिव शंकर परिवार है फ्रॉम प्लेन द हॉर्स गाना होगा आप सभी के नाम और साथ देने के लिए शुक्रिया और रेडियो मस्ती एंड वेल अब्दुल अंसारा बानू आप भी गुड आफ्टरनून विशेस लेकर आए हैं फॉर ऑल द लिसनर्स सो गाना आपकी ओर से सभी के नाम एंड एंजॉयिंग द सिलेक्शन थैंक यू जी याद कर रहे हैं सभी अपने कलीग्स को सिमी दर्शनी दर्शु रिया सारिका पिया और राज साथ में राजेश अंजलि एंड ललिता जी सभी जीतन परिवार को आप भी याद कर रही हैं साथ दे रहे हैं लव वॉचर से सो बीट योर कलीग्स बीट योर फैमिली बीट योर लव्ड वंस सभी के नाम होगा एक स्वीट सा डेडिकेशन और चलिए यहाँ पर आफ्टरनून को एंजॉय कर रहे हैं कहते हैं कि आज बेटी नितुषा दामाद अश्विन हर्षी और सभी दिगंबर परिवार हमारा साथ दे रहे हैं सभी के नाम आप डेडिकेट करना चाहते हैं एक ब्यूटीफुल गाना ममा मोहिनी है और साथ में है ब्रदर गिरीश गणेश परिवार है सिस्टर सुरेखा विकी निखिल सभी हुलाश परिवार तीशा यानीश सोहन राजानिया परिवार है फ्रॉम फ्लाक और आप है सुनीता सीताराम पचित्रवीय से सो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए सुनीता जी वेल हाँ मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM ऑन RM2 रेडियो मस्ती ऐसे ही आप अपने मैसेजेस अपने डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं इन्हें हम सजाने वाले हैं कुछ ब्यूटीफुल गानों के साथ साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती ये है आपका रेट्रो रिदम
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: RM2 Radio Musti.
1: And well friends, पुराने गानों का ब्यूटीफुल मिक्स 70s, 80s, 90s के ये प्यारे गाने आपके नाम इन योर रेट्रो रिदम इसी ट्रैक के साथ बढ़ेंगे समाचारों की ओर. स्टे वेल ट्यून्ड.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, 1 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। वर्कर्स राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में बदलाव इस साल के अंत तक किए जाने की उम्मीद। इसी सिलसिले में कल नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल की बैठक लगी, जिसमें प्रस्तावित बदलावों के पहले मसौदे पर चर्चा आगे बढ़ी। इनमें PRGF की भूमिका, स्वतंत्र अनुशासन समितियों और नियोक्ताओं के बदलाव से श्रमिक संगठनों की सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। श्रम मंत्री जाउतीम ने साफ किया कि इस पर काम पिछले साल ही शुरू हो गया था और इसका आत्मा शांतों की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। मॉरिशस में पेट्रोलियम सामानों की आपूर्ति को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 साल का समझौता तय हुआ। इसके तहत पेट्रोल, डीजल, जहाजों और विमानों के लिए ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम का कहना है कि इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। मॉरिशस अपने सभी पेट्रोलियम सामान विदेशों से मंगाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों के उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव और समुद्री रास्तों में रुकावट का असर देश पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के साथ इस विषय पर बातचीत सितंबर 2025 में उनकी नई दिल्ली यात्रा के दौरान शुरू की गई थी, यानी मध्य पूर्व के हाल के संकट के काफी पहले। इस समझौते में दामों पर फिर से गौर किए जाने का भी प्रावधान है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्विन का कहना है कि भू राजनीतिक स्थिति बदलने पर दोनों पक्ष दामों पर फिर से बातचीत कर सकेंगे। ये साझेदारी पेट्रोलियम सामानों तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब की जेल में नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में बंद गनिशन एलन से रविवार को मॉरिशस के राजदूत रियाद हालमट ने मुलाकात की। ये मुलाकात दूतावास की ओर से दी जा रही सहायता के तहत हुई, ताकि उनकी जेल की परिस्थितियों का भी जायजा लिया जा सके। वहीं उनके वकील गमावान आयलडेन का कहना है कि जरूरी मदद की अब भी कमी है और वे लगातार प्रयास कर रही हैं। वे अपने मुवक्किल को बेगुनाह बताते हैं और उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। एबन में युवाओं के लिए नई टेक्निकों से जुड़ी एक प्रयोगशाला शुरू की गई है। यहाँ AI, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने की सुविधा होगी। उद्देश्य है कि युवा केवल किताबी जानकारी तक सीमित न रहें, बल्कि अपने विचारों को आजमाएं और नई परियोजनाएं तैयार करें। विदेश स्तर पर दुनिया के मौसम पर एलनिनो का बड़ा असर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत महासागर में बन रहा एलनिनो अब तक के सबसे शक्तिशाली में से एक हो

0: सकता है। समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले महीनों में यह अंतर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका असर बारिश, गर्मी और तूफानों पर पड़ सकता है। इसके साथ ये समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। क्लियर फोन नंबर 1 फिनिक्स में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की बीबी आयशा हुसैन बाकस की मृत्यु हो गई है। वे इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम रुमालदा, वो लोग उन्हें आयशा के नाम से अधिक जानते थे और उनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे उठाया गया। रॉयल रोड फोन्दुसाक में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के लक्ष्मी प्रसाद हीरा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल शनिवार को दिन के 11 बजे उनके बेटे अमित हीरा के मकान फोन्दुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोन्दुसाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Radio.TV. Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.
3: कह दूँ तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूँ
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है

0: रेट्रो रिदम।
1: तो चलिए दोस्तों, 1:08 और फ्राइडे आफ्टरनून में आप हमारे म्यूजिकल हमसफर बने हैं। आई मस्ट से कि ये जो गाने हैं दे वर टू मच अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज से इतने दशक पहले ये गाने बने हो और आज भी इन 2026 हम इन गानों को उतना ही पसंद करते हैं। आई गेस द म्यूजिक, द वर्डिंग्स या फिर द आवाजें, जो भी है ये बस खूबसूरत सुविनियर्स हैं जिन्हें हम हमेशा सुनना चाहते हैं। सो इन्हीं प्यारे गानों को आपके लिए हम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 तक इन योर रेट्रो रिदम। एंड आई एम श्योर दैट हमारे जो लिसनर्स हैं, वी हैव वंडरफुल लिसनर्स जो इस शो को पसंद करते हैं। आपकी मैसेजेस, डेडिकेशन हम तक पहुंचते हैं, आपका प्यार हम तक पहुंचता है। एंड वी डू अंडरस्टैंड दैट ये जो स्लॉट है ये आपके लिए कितना स्पेशल है। सो बस इसी स्पेशल सुविनियर्स, इन्हीं स्पेशल सुविनियर्स को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन ऑन 5499-1294। जैसे हमने कहा कि बीच 70s, बीट 80s या फिर 90s, कुछ प्यारे गाने अभी से लेकर दिन के 2 तक इन योर रेट्रो रिदम हम सजाने वाले हैं। फॉर नाउ एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम, एंड दैट्स इन द वॉइसेस ऑफ कुमार सानू एंड कविता कृष्णमूर्ति। एंजॉय दिस वन।
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: मेरा एक सपना है कि बस आपके लिए ऐसे प्यारे गाने हम चलाते रहें और सपना हकीकत भी बन रहा है क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं इतने स्वीट हैं हमेशा साथ निभाते हैं सो थैंक यू सो मच परी का साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती ये है आपका अपना रेडियो मस्ती प्रोग्राम जहां पर लेकर आए हैं हम रेट्रो रिदम पुराने गानों को आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी यादों को ताजा कर रहे हैं
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इनटू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one beloved station.
0: And not just Mauritius, Saat Samandar Paar se bhi humare bohut saare listeners humara saath deete hain. So this one goes out for you, Mr. Dev. Paris se humara saath de rahe hain. A beautiful track for you. Goes out for your friend, boss of Switzerland. And equally goes out for friend, Joey of Congo Ma. Dosto ke saath, yaadon ko aap bhi taaza kar rahe hain. So well, taking you down memory lane with this beautiful track, Yaadon Ki Baraat. अभी के लिए तो ये जो गाना है एकदम सूट हो रहा है हमारे इस प्रोग्राम के साथ दैट्स योर रेट्रो रिदम थैंक यू सो मच हमारे डियर लिसनर्स हमेशा साथ निभाते हैं सो योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस योर दिल का हाल हैपनिंग 5499-1294 पर कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चुनकर लाए हैं फॉर नाउ यादों की बारात एंजॉय दिस वन

ब्यूटीफुल गानों का कारवा आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती. एंड ये जो गाना है डेडिकेट करेंगे फॉर नाती एंड पोते तनवीर रायन तेजल रायना आयशा बेटा तरश बेटी करुणा कामिनी कमला गंगाबिसन एंड दुबा परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. सो दैट्स योर रेट्रो रिदम. साथ देने के लिए शुक्रिया. वी ऑल्सो हैव हमारी प्यारी सी ज्योति जी शादो बनारस से साथ दे रही हैं डेडिकेटिंग गाना फॉर आशनी रेखा सुरेखा सभी मदब परिवार के नाम. हमारी प्यारी सी रेखा जी आप भी जुड़ गई हैं हमारे इस खूबसूरत म्यूजिकल कारवां के साथ. फ्रॉम पोम्पो जी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए शुक्रिया. गोज आउट फॉर योर फ्रेंड्स नौशीन करियानी और इंदिरा शालिनी भी है और स्पेशली हमारे सभी लिसनर्स के नाम. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच. चलिए सभी के लिए रेखा जी ये गाना आपके नाम आपके सभी अपनों के नाम. एंड यहाँ पर गानों को एंजॉय कर रही हैं जाना जी. सो साथ देने के लिए शुक्रिया. गाना आपके नाम.

खूबसूरत गानों में शामिल होता हुआ ये गाना डियरेस्ट तस्वीर निलसा दे रही हैं आप भी चलिए गाना फॉर यू फॉर भाई श्रवण एक्चुअली इन चाइना और साथ में है भाभी कृति साथ में है अभिनव कियान नव्या रितेश एंड सभी तिलक परिवार भाई तो चाइना में एंजॉय कर रहे हैं लेकिन सिस्टर सेंडिंग लोड्स ऑफ लव हियर फ्रॉम मॉरिशस तो चलिए फॉर योर स्वीट फैमिली हम डेडिकेट कर रहे हैं खूबसूरत गाना हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस ऐसे ही खूबसूरत गानों को आप एंजॉय करें प्रकाशवती जी एंड स्थिति हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप भी ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम कहते हैं मौसम क्वाइट ऑसम एंड आई एम श्योर ये जो गाने हैं मौसम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विजया जी कैसी हैं आप उम्मीद करते हैं एवरीथिंग ऑल राइट ऑन योर साइड डेडिकेट कर रही है खूबसूरत गाना आपके नाम सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं हूं परी आपके साथ दैट्स योर रेट्रो रिदम ऑन रेडियो मस्ती आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर एंजॉय दिस वन

RM2 Radio Masti Retro Rhythm चलिए दोस्तों, आई डू होप दैट यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, बिकॉज ये जो गाने हैं वो तो हमेशा से रहे हैं खास. एंड मौका तो मिलता है बस 12 से लेकर 2 बजे तक कि हम इन गानों को आप तक पहुंचा सके. और हम भी जानते हैं कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो तो हमें मैसेजेस के थ्रू पता चल ही जाती है. सो थैंक यू फॉर लविंग द सिलेक्शंस एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. विजया जी, आपके लिए हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार. देखिए, दिल से दिल के कनेक्शन की हम बात करते हैं, और जैसे हम कहते हैं कि एवरीडे मैसेजेस आते हैं, कभी मैसेज नहीं आते तो हमें पता भी जाता है कि हमारे वो स्पेशल इंसान कहाँ है, उनका मैसेज हम तक क्यों नहीं पहुंचा. लेकिन सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव, और उम्मीद करते हैं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा आपके साथ जरूर हो. विशिंग यू द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ. और अभी के लिए भेज रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार. एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग. बस गानों के साथ आपके मूड को सेट रखने की कोशिश हम जरूर करेंगे. साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर फुल फैमिली. सुया बिहारी हमारा साथ दे रही है आप कोंगोमा से, एंजॉय कर रही है सिलेक्शन को. और शामिल होता हुआ ये अगला गाना आपके पूरे परिवार के नाम, फॉर ऑल योर लव्ड वंस. और कहते हैं थैंक यू परी जी फॉर ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस गाने. ये तो गाने ही ऐसे हैं, ये तो दौर ही ऐसा है, क्या करें, हर एक गाना लाजवाब है. सो थैंक यू हमारा साथ देने के लिए. रानी जी साथ दे रहे हैं आप मेबर्ग से. डेडिकेट करना चाहती है गाना फॉर हस्बैंड राकेश. आपके 3 बेटे हैं वागीश, वैभव एंड ऋषभ. सभी सिरकिसन परिवार के नाम डेडिकेट कर रहे हैं आप ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाने. सो बस आपका साथ है तो गाने ऐसे ही चलते रहेंगे और आपका प्यार हम तक पहुंचता रहेगा. कविता जी यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं सिलेक्शन को. थैंक यू जी, मैं हूँ परी आपके साथ. और शुक्रिया ये स्वीट से मैसेज के लिए, और आपका प्यार हमारे लिए खास एंड स्पेशल. सीता और गीता बोलूराम साथ दे रही हैं शातो बनारस से. गाना होगा आपके लिए और ब्यूटीफुल गाना होगा फॉर फ्रेंड मिया. और ये है उनके डियरेस्ट फ्रेंड की ओर से जो भेज रहे हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, स्पेशल विशेज. सारा है पाम्पलमोस से और उन्हें विश करना चाहती हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. तो चलिए गुड विशेज हम जरूर पहुंचाएंगे विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. एंड यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड है 7 सिस्टर्स. कमला है, रीटा, सकुन, वीना, शारदा, रेखा, ब्रिंडा. 5 भाई, मुकेश, प्रदीप, राज, कवि और दूबा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप. सो थैंक यू फॉर द लव एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट. ये जो प्यार है हमारे लिए खास है, जैसे हम हमेशा कहते हैं. तो बस ऐसे ही अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए. नंबर आप जानते हैं, इट्स 5499-1294. RM2 Radio Masti.

0: Retro Rhythm.
1: फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम कि हम अगले प्रोग्राम की ओर बढ़े, जो है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज आफ्टर ओल्ड सॉन्ग्स, टाइम फॉर सम लेटेस्ट ट्रैक्स. और चलिए अभी के लिए इसी गाने को डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम, फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल, आशा भोसले, रफी साहब की आवाजें. एंजॉय दिस वन.

0: Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check exactly 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. 2 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का. पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं. 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रही हैं. इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं. वर्कर्स राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में बदलाव इस साल के अंत तक किए जाने की उम्मीद. इसी सिलसिले में कल नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल की बैठक लगी जिसमें प्रस्तावित बदलावों के पहले मसौदे पर चर्चाएं आगे बढ़ी. इनमें पीओजीएफ की भूमिका, स्वतंत्र अनुशासन समितियां और नियोक्ता के दबाव से श्रमिक संगठनों की सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं. श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने साफ किया कि इस पर काम पिछले साल भी शुरू हो गया था और इसका आत्मा शांतों की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है. देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है. इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है. फेरिना या न्यूआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है. सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता दे रही है. इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है. स्विट्जरलैंड में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद 5 लोग लापता हैं और 8 घायल हुए. इमारत में एक रेस्टोरेंट और रहने के लिए अपार्टमेंट्स थे और आग में ये पूरी तरह तबाह हो गए. शुरुआती जांच के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी. सीढ़ियां गिर जाने के कारण करीब 100 दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलें हुई और क्रेन की मदद से छत को खोलना पड़ा. 14 लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रही है. इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. Route des Pamplemousses, la croisée vallée des prêtres pour Lui-Mé, Port Lui-Mé, 60 साल के 60 years old के दुर्गा लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है. दुर्गा लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके भाई विक्रम लक्ष्मण के मकान पोटवी वाली दे प्रेत पोटवी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
7: Bombay Talkies, Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, friends, after old songs, it's time for some latest tracks. That was a cocktail gana. वैसे ज़िंदगी भी अगर देखा जाए तो happiness और sadness का cocktail ही है. कभी खुशी, कभी गम, यही तो life का सफ़र है. और इसी सफ़र को हम भी enjoy करते हैं, हम भी celebrate करते हैं. Because life तो होती है जीने के लिए दोस्तों. So ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता हुआ हर ये moment on RM2 Radio Masti. क्योंकि कहते हैं कि अगर life में एक soundtrack मिल जाए तो life खूबसूरत लगती है. और आपकी life में जो भी चल रहा हो बैकग्राउंड में, हमारा साउंडट्रैक का हमेशा चलता है. सभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. आवाज थोड़ी सी नासाज, लेकिन आई एम श्योर कि आप तो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आवाज आपको ज्यादा ट्रबल नहीं करेगी, क्योंकि आज कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम प्ले करेंगे फॉर दिस फ्राइडे आफ्टरनून TGIF. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. और आपके इस फ्राइडे को स्पेशल बनाएंगे हम ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, बी राउंड की खबरें और साथ में कुछ प्यारे गाने. फॉर नाउ एक फिल्म ऐसी जो काफी माल कर रही है और वो है आवारापन 2. उसी फिल्म का एक ब्यूटीफुल ट्रैक का, वैसे तो ये गाना हमने पहले भी सुना है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा इस गाने को थोड़ा सा चेंज किया है. और गाना तो है लेटेस्ट फ्रॉम द फिल्म आवारापन 2. इसी को डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम.
0: RM2 रेडियो मस्ती.
2: चलिए दोस्तों, साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं. दैट्स साज भट्ट एंड सुबोध शर्मा की आवाज़ों में एक ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम. आपका और हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना, काफ़ी स्पेशल. डेडिकेटिंग दिस वन फॉर ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का करेंगे इंतजार 5499-1294 पर.

0: 92
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि भूल भुलैया 4 जल्द ही बनने वाली है. और इसी बीच डायरेक्टर अनीस बाज़मी का बयान सामने आया है और जानते हैं कि क्या ये फ्रेंचाइजी को हम जल्द देख पाएंगे या फिर नहीं. भले ही भूल भुलैया 4 की चर्चा हो रही हो, मगर अनीस बाज़मी का कहना है कि इस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट तभी बनेगा जब फिल्म को ऐसी कहानी मिलेगी जो पिछले फिल्मों के लेवल की हो. और भूल भुलैया 2 और 3 का डायरेक्शन करने वाली अनीस बाज़मी कहते हैं कि कार्तिक आर्यन के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन सिर्फ एक्टर के होने से फिल्म को मंजूरी नहीं मिल जाती. एक बातचीत के दौरान अनीस आज़मी के हवाले से ये कहा गया कि भूल भुलैया फिलहाल के लिए बनना थोड़ा सा मुश्किल है. हमने तीसरी फिल्म में अपने लगभग सारे दाव खेल दिए थे. कार्तिक और मेरी समझ बहुत अच्छी है, वही बहुत मेहनती एक्टर है वो, और जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है. और अगर हम कोई ज़बरदस्त कहानी लेकर आते हैं तो फिर इस पर फिल्म ज़रूर बनाएंगे. फिल्म की सफलता का 70% हिस्सा कहानी पर निर्भर करता है. सो अभी के लिए वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट, ये कहना है अनीस बाज़मी का. एंड इस फिल्म के फैंस तो इस फिल्म के फ्रेंचाइजी का हमेशा इंतजार करते रहते हैं, लेकिन द फर्स्ट पार्ट दैट वाज माइंड ब्लोइंग. ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, उसके बाद इतने सारे इसके जो कह सकते हैं सीक्वल्स बनते हैं, ये अलग हिट करते हैं, लेकिन ओरिजिनल ऑलवेज रिमेन्स ओरिजिनल. सो फॉर ऑल द फैंस ऑफ भूल भुलैया, फॉर ऑल द फैंस ऑफ केके, वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना. एंजॉय दिस वन.
0: RM2 Radio Musty.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well friends, जैसे हम कहते हैं every song is beautiful, लेकिन जब आप अपनी country में आकर गानों को सुनते हैं तो अलग ही मजा आता है. So अभी के लिए we have a special dedication. Welcome, welcome Uncle Rajesh. आपका हम welcome करते हैं Paradise Island. आए हैं Mauritius में, so I am sure you're going to enjoy your holidays. We also have nephew Ryan. अभी आए हैं. We have Vikash and Chris. हमारा साथ दे रहे हैं आप. So well, have a wonderful time on the waves of RM2 Radio Musti. आपका warm welcome और we do hope that you'll enjoy your holidays, your family time. So make some beautiful memories, Uncle Rajesh. आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी special wishes. ये है हमारी पूरी RM2 Radio Musti team की ओर से, MBC team की ओर से. And sending loads of good wishes. And of course, जैसे हम कहते हैं, खूबसूरत गाने चलते रहेंगे, बस अपनों का साथ हो, अपनों का प्यार हो. For now, हमारे साथ connected हैं आप. So that's your RM2 Radio Musti. Your messages, your dedications, 5499-1294 पर. Set your

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: एग्जैक्टली 3 PM देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रहे हैं। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। वर्कर्स राइट एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट में बदलाव इस साल के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। इस सिलसिले में नेशनल ट्राइपार्टाइट बैठक की बैठक लगी। इसमें प्रस्तावित बदलावों के पहले मसौदे पर चर्चाएं आगे बढ़ी। इनमें PRGF की भूमिका, स्वतंत्र अनुशासन समितियों और नियोक्ताओं के दबाव से श्रमिक संगठनों की सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल रहे। श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने साफ किया कि इस पर काम पिछले साल ही शुरू हो गया था और इसका आत्मा शांतु की भूख हड़ताल से कोई संबंध नहीं है। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेगिना या नुआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता प्रदान कर रही है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। स्विट्जरलैंड में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद 5 लोग लापता हैं और 8 घायल बताए जाते हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक दूसरी मंजिल पर आग लगी। सीढ़ियां गिर जाने के कारण करीब 100 दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मुश्किलें हुई और क्रेन की मदद से छत को खोलना पड़ा। 14 लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Montfleury, circonstance Saint-Piamé, circonstance Saint-Piamé, Béassi Sal qui est tué à Zulki, ni la main ni la douce qui m'rit ho gai hai, ni la main ni la douce qui m'rit ho gai hai, paidaish naam Dalapa, log unhe Celia ke naam se adhik jante the, unke arthik kal subah ke 10 baje unke bete Shri Niladu Krishna ke makan Saint-Pierre se utha kar antim sanskar ke liye circonstance ki shumshan bhumi le jaya jayegi, cremation tomorrow at 10 am. Balmiki Road, Boamong, plein de papa aimé, Boamong, plein de papa aimé, 10 sal ke 30 years old ke Tandra Shekhar Ranglul, Tandra Shekhar Ranglul ki mriti ho gai hai. Log unhe Kilan ke naam se adhik jante the. Unki arthik kal subah ke 9 baje unke pita Devanand Ranglul ke makan plein de papa se utha kar antim sanskar ke liye piton ki shumshan bhumi le jaya jayegi, cremation tomorrow at 9 am. Shok mein doobe in dono parivaron ke prati hamari gehri sahanubhuti hai.
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: More music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies, Radio Musty.
6: Radio Musty.

0: Cheese.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So that was Chaudhary song aap sabhi ke liye jo is waqt hamara saath de rahe hain Friday afternoon 21st of August yes 3:08 ho chuke hain and I do hope that aap hamara saath nibha rahe hain and you are enjoying the time वैसे दोस्तों जब Friday आता है ना ये एक अलग ही खुशी लेकर आता है after a week of hard work now it's time to relax and chillax अब जो weekend आता है so I'm sure कि आपके बहुत सारे plans बन रहे होंगे और Friday evening के plans तो बन ही जाते हैं so जो भी है आपके plans not to forget हम तो आपके music हम सफर है वी आर द रेडियो पार्टनर्स जिन्हें आपने चूज किया है आपको म्यूजिकली एंटरटेन रखने के लिए सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा साथ निभा रही हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM बी टाउन की खबरों के साथ कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स लेकर आए हैं आपके लिए सो जस्ट चिल एंड एंजॉय द टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, फिल्म 80 के बाद तापसी पन्नू अपकमिंग फिल्म गांधारी में नजर आने वाली है। मेकर्स ने इसके रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इसकी कहानी के बारे में भी बताया है। सो तापसी पन्नू की अदाकारी वाली फिल्म गांधारी की रिलीज डेट सामने आ गई है। इशक सिंह, छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और जतिन सरना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और इसका डायरेक्शन देवाशीष मखीजा ने किया है, जबकि इसकी जो लेखिका है यानी की कहानी और जिन्होंने इसका डायरेक्शन किया है वो है कनिका ढिल्लो। सो आपको बता दें, अपकमिंग फिल्म गांधारी 3 सितंबर 2026 को ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। एक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाती है कि जब किसी महिला की प्यारी चीज खतरे में हो तो वो किस हद तक जा सकती है। इसमें भी दिखाया गया है कि माँ के प्यार से ज्यादा ताकतवर और कोई चीज नहीं होती और वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए जो सफर तय करती है उससे ज्यादा मुश्किल और कोई सफर नहीं होता। सो यहाँ पर काल्पनिक शहर जोयपुरा की पृष्ठभूमि पर आधारित गांधारी अटूट विश्वास, शांत सहन शक्ति और एक साहस की कहानी है और कहानी का केंद्र है बानी यानी कि तापसी पन्नू। ये एक ऐसी माँ है जिसकी ममता की परीक्षा हर मोड़ पर होती है और उसे पूरा यकीन होता है कि त्याग और अकल्पनीय चुनौतियों का सामना वो साहस से कर पाएगी। तापसी पन्नू अब तक की सबसे मुश्किल फिजिकल रोल्स में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म जबरदस्त एक्शन के साथ मानवीय संवेदनाओं का गहरा मेल है, यानी कि इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन जहाँ पर इमोशंस और एक्शन का फुल ऑन कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलने वाला है। सो ये है तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म गांधारी, जहां पर वो एक माँ का किरदार निभाएगी, एक माँ

0: जो जूझती है चुनौतियों के साथ. सो क्या है कहानी और कितनी पसंद आएगी ये उनके फैंस को, इसके लिए हमें करना है इंतजार टिल 3rd of September, जिस तारीख पर ये फिल्म रिलीज होने जा रही है. और अच्छी बात ये है कि ये फिल्म OTT पर रिलीज हो रही है. सो इसके लिए सिनेमा घरों तक जाने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने घर के कंफर्ट में देख सकते हैं. सो OTT पर रिलीज होगी ये फिल्म ऑन 3rd of September, दैट्स गांधारी, और जिसमें नजर आने वाली है तापसी पन्नू.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों, संदीप रेंडी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्पिरिट से दीपिका पादुकोण के बाहर होने पर काफी विवाद हुआ था। उस समय ऐसी खबर आई थी कि फीस और काम के घंटों को लेकर हुए मतभेद की वजह से दीपिका प्रोजेक्ट से हट गई और इस विवाद को संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने फिर से हवा दी है और अब ये इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और बात करते हुए नजर आए। उन्होंने दीपिका के बाहर होने के कारणों के बारे में भी नए दावे किए हैं। जब प्रणय रेड्डी वांगा से पूछा गया कि फिल्म मेकर ने दीपिका की जगह तृप्ति डामरे को लेने का फैसला क्यों किया, तो प्रणय ने आरोप लगाया कि फीस, शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट के दूसरे पहलुओं को लेकर असहमति थी। उन्होंने कहा कि कारण वही है जो पहले बताया गया था। एक तो फीस थी, दूसरा टाइमिंग और इसके अलावा कुछ और कारण भी थे, मुझे अब ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई बातें थी और यह संदीप का फैसला था कि इस फिल्म से दीपिका को हटाया जाए। सो अभी के लिए तो एक बार फिर इस विवाद को हवा मिल गई है और अब देखना यह है कि क्या दीपिका पादुकोण इस पर रिएक्शन देगी या फिर अपनी मैटरनिटी को वो एंजॉय करेगी। वैसे अभी के लिए तो हम जानते हैं बहुत ही सून शी इज गोइंग टू डिलीवर हर सेकेंड बेबी एंड अभी के लिए वो भी अपनी सारी फिल्मों का शूटिंग कंप्लीट करने में लगी हुई है, सारे अपने जो शूटिंग शेड्यूल्स हैं उन्हें वाइंड अप करने में लगी हुई है। सो आई एम श्योर कि अभी के लिए उनके पास इस पर रिएक्शन देने का टाइम तो नहीं होगा, लेकिन जो भी वाद विवाद है बॉलीवुड में चलते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए तो हम संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट को भी गुड विशेस देंगे एंड हमारी प्यारी सी दीपिका पादुकोण उनको भी गुड विशेस देंगे, क्योंकि अभी के लिए बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। सो गुड विशेस के साथ यहाँ पर गुड म्यूजिक ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। चलिए दोस्तों, बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, आपके फेवरेट सेलेब्स। देखिए भाई, सेलिब्रिटीज की लाइफ है, पैसे मिलते हैं, अच्छी खासी उनकी कमाई होती है, लेकिन उसके पीछे काफी स्ट्रेस जुड़ा होता है और ये जब वाद विवाद सामने आता है तो लगता है इट्स नॉट दैट इजी एज वेल। लेकिन चलिए, अभी के लिए तो खबरें हैं तो आप तक पहुंचाते रहेंगे और दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। थोड़ी ही देर में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:39 एंड जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. वादा किया था, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. वैसे तो काफी लंबे टाइम से आपके मैसेजेस आ गए हैं, लेकिन बी डाउन की खबरें देते देते आपके मैसेजेस थोड़े से पीछे छूट गए. आई एम सो सॉरी. चलिए, इट्स टाइम टू रीड आउट आपका प्यार और आपका जो स्वीट सा एहसास है जो आप शेयर कर रहे हैं ऑन 5499-1294. रेट्रो रिदम से हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी प्यारी प्यारी रोशनी. गानों को एंजॉय कर रही है और फर्स्ट आवर में जो तेरा मेरा रिश्ता गाना चलाया था उन्हें काफी अच्छा लगा. आई नो ये गाना आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है. सो थैंक यू रोशनी एंड लवली फ्राइडे टू यू डियर लेडी. थैंक यू सो मच. और आपके लिए गुड विशेस हम पहुंचाते रहेंगे विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. साथ ही यहाँ पर विजया जी भी कह रही है कि जो गाना चला था तेरा मेरा रिश्ता, उसमें एक लाइन आती है, तेरा सुकून तो तेरे ही पास है, और दैट रियली टचेस योर हार्ट. एक्चुअली कभी कभार गाने ऐसे होते हैं कि उसके जो अल्फाज है ना वो सीधा आपके दिल तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज यू रियली फील.

द लाइंस, बिकॉज आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये फेज आपने भी देखा हुआ है और लगता है कि ये जो शब्द है वो कितना परफेक्ट सेट हो जाते हैं. सो आई एम श्योर दैट ये गाना काफ़ी पॉपुलर तो होगा ही होगा, लेकिन इसी के चलते फिल्म जो आजकल काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है वो शायद थोड़ा और अच्छा बिजनेस करेगी. यस, आवारा पंटू फिल्म का ये गाना. सो थैंक यू विजया जी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेज. गाना आपके नाम, प्यारे प्यारे गानों का साथ, और डेडिकेट करेंगे ये स्वीट से गाने आपके लिए भी. ऑल द वे फ्रॉम लाल माती आए हैं देविसन अपनी गुड विशेस के साथ. सो अगला गाना होगा आपके नाम. एंड वेल, यहाँ पर कह रहे हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती. एंड एक प्यारा सा गाना एक पूरे परिवार के नामों के, दैट्स इन मिलानो. मिलानो में अभी बरसाती मौसम है. रीटा गजादर एंड सभी परिवार हमारा साथ दे रहे हैं. सो गजादर परिवार एंड बालचंद परिवार साथ दे रहे हैं फ्रॉम मिलानो. रीटा जी, गाना होगा फॉर ऑल योर लव्ड वंस एंड एंजॉय द बरसाती मौसम. होंगे कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए एंड लोड्स ऑफ लव ऑल द वे फ्रॉम मॉरिशस. चलिए यहाँ पर श्याम दिव्यचंद जी साथ दे रहे हैं, कहते हैं गर्मा गर्म इलायची वाली चाय, बी टाउन के गाने, बी टाउन की अपडेट्स, इससे परफेक्ट और क्या हो सकता है. एकदम सही कहा आपने, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी परफेक्शन इसीलिए मिल रहा है बिकॉज आपके फ्रेंड्स भी इस वक्त आपके साथ हैं. सो आफ्टरनून टाइम, गर्मा गर्म चाय, गुड म्यूजिक एंड दोस्तों का साथ. सो आई एम श्योर कि आपकी जो आफ्टरनून है एकदम परफेक्ट है. फ्राइडे सेलिब्रेशंस ऑलरेडी ऑन. गाना गोज आउट मिस्टर श्याम आपके नाम, साथ ही सभी दोस्तों के लिए, राजू, लालदेव, सैमुअल, सैम, एशले, सुनील, विकास और सभी देवीचंद परिवार ऑफ पेरेबे, सबको आपने याद किया है. सो गाना होगा आप सभी के नाम. एंड वेल, बैक फ्रॉम स्कूल और आज आप घर आ रही हैं बाय बस एंड लिसनिंग द सॉन्ग्स. सो चलिए यहाँ पर ललिता जी हमारी म्यूजिकल हमसफर बनी है आप. गाना फॉर योर लवली स्टूडेंट्स ऑफ पोर्टलू स्कूल एंड सभी जीतन परिवार के नाम. साथ ही यहाँ पर हमारे जो बस में पैसेंजर्स हैं, हमारे ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब, सभी को याद कर रही है. ब्यूटिफुल ट्रैक टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड. एंजॉय दिस वन.

0: RM2 रेडियो मस्ती बॉम्बे टॉकीज रेडियो मस्ती
1: एंड वेल फ्रेंड्स, समय हो चला है कि मैं आपसे लूं अलविदा. इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. और आ रही है गिनीशा लेकर योर फ्राइडे मैशअप. सो उनका साथ निभाइए. एंड जाते जाते यहाँ पर एक स्वीट सा डेडिकेशन ये होगा फॉर वीना.

0: गिसा बेलवी मोहल से हमारा साथ दे रही हैं, सभी परिवार सभी दोस्तों के नाम डेडिकेट कर रही हैं अगला गाना. सो देवी जी फ्रॉम घोघो डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर ग्रैंडसन गिनीश संगा ऑफ गुडलैंड्स, और आज है उनका स्पेशल दिन, उनके लिए लव एंड ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार. सो चलिए इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. मुलाकात होगी कल आपसे अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock इन योर टाइमलेस तड़का. तब तक के लिए हमारा साथ निभाइए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.
1: RM2 Radio Mastery.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check exactly 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
7: नमस्कार। 4 बजे की

0: समाचारों में स्वागत है आप सभी का। समुद्र की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है अब इसकी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। भारत सरकार की ओर से दिए गए वेव गेज यानी समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है। ये उपकरण एक साल से अधिक समय से काम कर रहा है। इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। पेनल्टी पॉइंट्स सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल हैं। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत बीज उत्पादन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेरिना यानुआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता दे रही है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद मर्क एंड को और मॉडर्ना की ओर से तैयार इंटिस्मेरान नाम के एक खास टीके ने त्वचा के कैंसर को दोबारा होने से रोकने के अच्छे नतीजे दिखाए हैं। 1000 से अधिक मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले इलाज के साथ दिए जाने वाले इस टीके ने कैंसर के दूसरे हिस्सों में फैलने के खतरे को भी काफी कम कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: RM2 Radio Musti

तो चलिए जी, द फ्राइडे मूड इज ऑन RMT रेडियो मसीहा एंड अग्निशा स्टिल हियर आपका साथ देने के लिए. ऑफ कोर्स इट्स फ्राइडे और जब फ्राइडे आते हैं तो वी किक स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल एंड लवली लवली गाने. जी हाँ दोस्तों, बोलते हैं ना कि फ्राइडे तो फ्राइडे पार्टी शुरू हो जाती है और पार्टी तो शुरू हो गई है इन योर फ्राइडे मैशअप. बट ऑल दोस ऑलरेडी ऑफिस से निकल चुके हैं, लैपटॉप बंद कर लिया, ऑफिस बंद कर लिया और बस आ गई है टू टेक द रोड बैक टू होम. तो ऑफ कोर्स वी आर हियर टू गिव यू वन ऑफ द लवलीस्ट कंपनी हियर विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. सो माय डियर लवली पीपल आउट देयर, थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए. बस ही साथ देते रहना. सो ड्राइव केयरफुली मिस्टर ड्राइवर, मिसेस ड्राइवर एंड टू ऑल दोस जो बस में है, बिल्कुल जी आप कंडक्टर साहब को बोल दीजिए कि रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि अगला गाना वो खासकर आपके लिए है.

0: to Radio Musty.
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: Well, guys, it's a Friday afternoon, and yes, I've got you the beautiful गानों का selection. It's Friday, the weekend is just around the corner, my dear. और energy level होना चाहिए full on when you're listening to Radio Musty. आपका mood कैसा भी होगा, जैसे हो सकता है you're थोड़ा सा tired, थोड़ा सा lazy, या already weekend mood जो है already on हो चुका है, तो radio का volume थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि we are bringing you non-stop good vibes on Radio Musty. So relax कर लीजिए ना मेरी जान, अपना काम wrap up कर लीजिए और Friday को बनाओ fun day. Stay tuned and stay happy. और याद रखो कि वीकेंड स्टार्ट्स विद राइट म्यूजिक ऑलवेज. दिस इज योर फ्राइडे मैशअप ऑन दिस लवली फ्राइडे आफ्टरनून. ये आफ्टरनून का डोज ऑफ म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस सिर्फ और सिर्फ गिनिशा के साथ. और ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू किक स्टार्ट द लवली गेम. जी हाँ, इट्स फ्राइडे एंड लेट्स सी हु इज लकी इनफ टू विन अ टिकट, अ प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर जोशान लाइव कॉन्सर्ट इन मॉरिशस. सो द गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu. जी हाँ, so फिलहाल के लिए जस्ट क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी. बिल्कुल जी, जब भी हम शान के बारे में बात करते हैं तो उनके जो म्यूजिक है, उनकी जो आवाज है, इंसान को खींच के दूसरी दुनिया में पहुंचा ही देते हैं. इट्स अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान. एंड नाउ आरएमटी रेडियो मस्ती इज गिविंग यू द चांस टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव ऑन रेडियो मस्ती. You can play with Radio Musty right now and stand a chance to win the platinum ticket to assist the spectacular Shan live concert in Mauritius. It's one voice, one stage, one unforgettable night at SVICC at Pai on the 5th of September 2026. As from 8 PM, proudly organized by ticketbox.mu. Poochenge ek bahut hi easy sa question. Aapko sahi jawab dena hai on 54991294 par 5499912 94. Yes, the magical number jahan pe aap अपने सही जवाब भेजेगा जरूर वीव फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, देन ओनली यू कैन बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम. यू जस्ट हैव टू टेल मी द सिंगर शान, द बॉलीवुड इंडियन प्लेबैक सिंगर शान, कंपोजर, एक्टर, टेलीविजन होस्ट भी है, उसका रियल नेम क्या है. द सिंगर शान, उनका रियल नेम क्या है. 5499 1294 पर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट आंसर. यस, फुल नेम फुल एड्रेस के साथ. बेस्ट ऑफ लक टू यू.
0: RM2 Radio Musty.
3: Sunte raho.
4: Let me hear you.

बिल्कुल जी, घुल मिला के मौजा ही मौजा कराएंगे आज ऑन ऑल राइट टू रेडियो मस्ती. इट्स योर फ्राइडे मैशअप विद मी किनिशा. आई रियली होप दैट एवरीवन इज एंजॉयिंग द किड म्यूजिक. कैन यू फील द वाइब्स? यस माय डियर, आई कैन फील इट. और अभी के लिए आई हैव गॉट यू अ गिफ्ट. यस, इट्स अ कैडो फॉर यू. यू कैन जस्ट गिव मी द राइट आंसर राइट नाउ माय डियर लवली लिसनर्स एंड जस्ट बी माय लकी विनर. हमने पूछा है एक सवाल जो बहुत ही है आसान. सही जवाब देने पर यू कैन विन अ प्लैटिनम टिकट टू असिस द स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट ऑफ शान लाइव इन मॉरिशस. हमने पूछा द सिंगर शान का असली पूरा नाम क्या है. व्हाट इज द रियल नेम द पूरा नाम ऑफ द सिंगर शान. 5994.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
3: चार बज के 43 मिनट्स हो चुके हैं एंड स्पोर्ट्स गुरु ऑल सेट इन द स्टूडियो विद सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज. गुड आफ्टरनून टू अरविंद.
4: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. सो कल अनाउंस कर रहे थे और इट्स ऑल सेट फॉर द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ 2026-2027 प्रीमियर लीग.

0: All right, all set for 2026-2027 Premier League, जिसमें आज डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल आएगा कोवेंट्री सिटी के खिलाफ खेलने, एंड दैट विल हैपन इन द एमिरेट्स स्टेडियम. डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल एकदम मजबूत होके आ रहा है नए नए खिलाड़ियों के साथ, नए नए खिलाड़ी और साइन करना चाहता है तो दे आर ऑल सेट. कल बता रहे थे आउट ऑफ 26 फुटबॉल पंडित 23 आर गोइंग फॉर आर्सेनल. तो हम कौन हैं इनके विचारों को उनके खिलाफ जाने के लिए? आर्सेनल को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल ही क्यों ना हो.
1: मुझे देख के क्यों बोल रहे हो?
0: नहीं, बोल रहा हूँ इसी.
1: ओके,
0: सो ये वीकेंड बहुत ही अलग होने वाला है. सुबह में कह रहा था कि बड़े दिनों के बाद फुटबॉल प्रेमियों के नाम फुटबॉल मैच आ रहा है, और प्रीमियर लीग जब आता है तो माहौल एकदम बदल जाता है. यू नो दैट चारों तरफ अभी वीकेंड में मैच होंगे तो संडे को लोग बाजार जाएंगे तो कहेंगे मेरी टीम ने ऐसा किया, उसने ये गोल किया, उसने वो गोल किया. मंडे को ऑफिस आएंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले लिवरपूल वालों को चिढ़ाएंगे, वो कहेगा कि देखा कुछ नहीं कर पाया. सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ फुटबॉल, और स्पिरिट को और तगड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए. नॉट जस्ट गिविंग द रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट को मक्खन मार के और मलाई, किसे मक्खन मलाई मार के प्रस्तुत करना.
1: बिल्कुल, ऑन सैटरडे आफ्टरनून एज वेल वी डू हैव अ स्पोर्ट्स शो. एग्जैक्टली,
0: तो ये रेडियो बस्ती में होता है. आज आर्सेनल कोवेंट्री ऑन पेपर, आर्सेनल बिग फेवरेट, खासतौर पर जब उसने जिस तरह से हराया था

0: हाल ही में मैनचेस्टर सिटी को इंडी कम्युनिटी शील्ड 3-0 से, और आज जबकि सभी खिलाड़ी वापस आ चुके हैं कोवेंट्री सिटी के लिए, इट्स अ वेरी वेरी हार्ड बिगिनिंग इन प्रीमियर लीग। 26 साल बाद ये टीम वापस आ रही है प्रीमियर लीग में, दे आर द चैंपियनशिप चैंपियन, लेकिन यहां पर पाला पड़ा है प्रीमियर लीग चैंपियन से, ऑल सेट। सो ये आज के मैच, कल के मैचों में अर्ली किक ऑफ, कल आप टीवी साफ कर लीजिएगा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैदान में उतरेगा हल सिटी के खिलाफ, फिर एवर्टन क्रिस्टल पैलेस, इपस्विच संडरलैंड, नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स, ब्रेंटफोर्ड स्पर्स, ये सैटरडे मैच हैं। इट गोज ऑन संडे ब्राइटन एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी बोर्नमूव, और संडे लेट मैच 7:30 किक ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड अगेंस्ट लिवरपूल, और इस पहले सप्ताह का आखिरी मैच इट्स ऑन मंडे फुलहम वर्सेस चेल्सी। सो ऑल सेट फॉर द प्रीमियर लीग टू हिट इट, और हम यहां पर है ना आपको ज्यादा जानकारियां देने के लिए, कल के मैच के बारे में कल सुबह आपको ज्यादा जानकारियां देंगे विकास, उनका साथ जरूर दीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रांसफर न्यूज। टोटनहम हॉटस्पर काफी मजबूत टीम होती जा रही है, दे हैव अग्रीड 75 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग टू साइन मैनचेस्टर सिटी सावीनो, और ये भी खबर है कि मामूश को भी साइन किया जा सकता है। सो एक के बाद एक दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू प्लेयर्स। वेस्ट हैम यूनाइटेड का वन बिसाका एस्टन विला में आ गया है ऑन लोन, और युआओ पेड्रो सेट टू साइन न्यू चेल्सी डील। वीकेंड के दौरान डील होंगे या नहीं ये तो पता नहीं, पर कुछ खिलाड़ी आएंगे इधर, कुछ खिलाड़ी जाएंगे दूसरी ओर, इन सब पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल क्रिकेट के बारे में चर्चा कर लें, क्रिकेट जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच, इंग्लैंड की टीम 409 रन बना पाई इन द फर्स्ट इनिंग्स, पाकिस्तान की टीम की बैटिंग अभी चल रही है दूसरे इनिंग्स, दे आर 59 for 3, 179 रन पीछे, सो इंग्लैंड की टीम लगता है कि उसके लिए ये मैच जितना मुश्किल नहीं होगा विद दिस बिग टोटल जो उन्होंने रखा है, और इस बिग टोटल को पार करने के लिए काम आसान नहीं होगा। लेट्स चेक आउट सम लोकल न्यूज। यहाँ पर हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं बीच वोली में, बीच वोली में हमारी लड़कियाँ खासतौर पर बन ए लातू, ये दोनों पहुंचे इन द नेक्स्ट राउंड, लीजा बन और जुआनिता लातू चौथा मैच जीत चुके हैं। अब उन्होंने हराया गाम्बिया के ओगा अन्ये और मारियामा सांबू दो सेट से 21-17, 21-16, तो बेस्ट ऑफ 16 में से अब क्वार्टर फाइनल में चले गए हैं, जहां पर उनका मुकाबला मोजाम्बिक के वानेसा मुयंगा से होगा और आना सिनापोता, ये फ्राइडे को खेला जाएगा 6 बजे मॉरिशियन टाइम। सो लीजा बर्न ए जुआनिता लातू दे आर प्लेइंग सो वेल, और वी होप दैट They bring the medal for us. घुड़दौर के बारे में बता रहे थे, घुड़दौर में इस वीकेंड इस संडे को रेस लगेगी, इस पर जानकारियां देंगे आपको, घोड़ों के नाम, कौन दौड़ रहा है कौन नहीं दौड़ रहा है, ये कल आपको देंगे संडे रेस कोर्स। So, right, all set for the Premier League to start. All the best for the teams. May the best team win. चाहे वो Arsenal हो, City हो, Liverpool, Manchester United या टोटनहम हॉटस्पर, मे बी चेल्सी एज वेल, यहां पर इधर उधर बोल लेते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर ऑल प्रीमियर लीग लवर्स, पीपल विल बी वेरी हैप्पी दिस वीकेंड विद द कमिंग बैक ऑफ द प्रीमियर लीग,
1: एंड इट्स सो नाइस टू सी हाउ पीपल आर गेटिंग यूनाइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट।
0: हां हां, गुड गुड,
1: बहाना मिल जाता है ना,
0: मिल जाता है, या
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulay Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शंस जो हम लेकर आए हैं स्पेशली खासकर आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मस्ती इन योर फ्राइडे मैशअप। जी हाँ दोस्तों, वैसे क्या सीन है, कॉफी हो गई, चाय पी ली आपने, अब बस एक ही काम बाकी है, वीकेंड मूड को एक्टिवेट करना। और ये आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज कोई बोरिंग मूड नहीं चलेगा, बिल्कुल नो स्ट्रेस नो टेंशन, सिर्फ म्यूजिक मस्ती और पॉजिटिव एनर्जी यू कैन शेयर हमारे साथ। तो वेर एवर यू आर राइट नाउ, जो भी आप कर रहे हो थोड़ा सा स्माइल करो, क्योंकि फ्राइडे फील्स ऑफिशियली ऑन RM2 रेडियो मस्ती। और एक इंसान है अभी जो बहुत ही ज्यादा स्माइल मारने वाली है, द

0: to Radio Musti.
1: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करें। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: TechMag powered by
4: 365. Bien plus encore.
5: Imagine creating a digital copy of a person's heart before performing surgery. It may sound like science fiction, but it's already becoming reality through a technology known as a digital twin. A digital twin is a virtual model of a real object, machine, or even a human organ. By combining medical scans, patient information, and artificial intelligence, doctors can simulate treatments and predict how a patient's body might respond before carrying out a real procedure. Digital twins are already being used in industries such as aviation and manufacturing.

Well, guys, welcome back in the second hour of this beautiful show, and that's your Friday mashup with me, Ginisha, on RMT Radio Mercy. Hanji, it's a Friday, and you can already feel that weekend energy is on air, and it's in the air, actually. Whether you're heading home, finishing work, cruising through traffic, or simply chilling, hamare saath, this afternoon is all about good, good vibes. So stress ko bolo bye-bye, mere jaan. Weekend ko bolo hello, hum aa gaye hai. Stay with us, because coming up, we've got your favorite tracks, great vibes, or plenty, plenty reason to smile. आपका फ्राइडे आफ्टरनून हमारे साथ म्यूजिक के साथ मस्ती के साथ. सो कीप ऑन स्माइलिंग, कीप मूविंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप दैट रेडियो ऑन. बिल्कुल. और चलिए मस्ती तो हम करते ही रहते हैं, तो अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन 54991214 पर. अपने मैसेजेस ऑलरेडी भेजना शुरू कर दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर, एंड ड्राइवर्स हु आर हिटिंग द रोड, ड्राइव केयरफुली.

वैसे एनर्जी चेक, मूड चेक, वीकेंड भी चेक हो गया है. और अगर आपका मूड अभी तक फ्राइडे वाला नहीं हुआ है ना, तो फिकर नहीं करना है मेरी जान, हम है ना साथ देने के लिए. वैसे हम आप लोगों का मूड एकदम ठीक करेंगे, क्योंकि आई हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स अप म्यूजिक. और आज फ्राइडे किस ऑफ अगस्त 2026, टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे माय डियर. जी हाँ, एंड आई हैव समवन वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, माय लवली खुशी, मेरी प्यारी बहन का जन्मदिन है आज. सो आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे. सो हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट हार्ट ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन रेडियो मस्ती, और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, एक चुम्मा भी आपके लिए। विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव माय स्वीट हार्ट। यानी कि ये है हमारी प्यारी सोनी जो रहती है मौसलमान से, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन अ मैजिकल बर्थडे टू यू, अ वीडियो रामदुआ। सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे, जी हां, द नेक्स्ट वन गोस आउट टू यू। तो चलिए जी, तैयार हो जाइए टू ग्रूव हमारे साथ अनाउंसिंग टू रेडियो मस्ती, सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान की आवाजों में। मंथन के कहां जाना है आज हमारे साथ? बिल्कुल जी, आपका स्वागत है ऑन
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: just about the music. It's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: वर्ल्ड जी टाइम तो बीता चला जा रहा है 5:32 हो चुके हैं टू ऑल आवर ड्राइवर्स ट्रैफिक में फंसे हो अरे मेरी जान नो स्ट्रेस नो टेंशन फ्राइडे आफ्टरनून ट्रैफिक का एक ही सलूशन है म्यूजिक का वॉल्यूम हाई कर लो और RM2 रेडियो मस्ती को सुनते रहो बिल्कुल जी मेरी जान एक्चुअली कीप डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग और अपना पेशेंस मेंटेन भी करना जरूरी है बिल्कुल जी एंड एक्स्ट्रा टाइम लेकर हमेशा चलना क्योंकि पीक टाइम में जब काम से निकलते हैं तो हमेशा ट्रैफिक कहीं ना कहीं में फंसे होते हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं relax, calm down and enjoy the good music. So, chaliye ji, filhal ke liye, I've got your dedications. So, the next gana jo hum pesh karne wale hain, hum dedicate karne wale hain, specially kiske liye? Yani ke hamari pyari si jo Rebecca hai, dedicate karna chahenge apne baby Arshad ke liye, jo wo bahut hi zyada miss kar rahi hai. Yashika ka janamdin hai from Petit Raffray. Hey, happy birthday to you, my sweetheart. And lots of love and happiness to you. And रेडियो मस्ती के लिए है ये खूबसूरत सा मैसेज किसी ने भेजा है नाइस सिलेक्शन थैंक यू माय स्वीट हार्ट और आप हमारी प्यारी सरोजा सरोजा नाम लिख के भेजा करो ना मेरी जान सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू सरोजा ब्रदर इन लॉ प्रीतम गणेश का जन्मदिन है गुडलैंड से है वो एंड बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम सती फ्रॉम रिविया जोरापा विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे ऑन RM2 रेडियो मस्ती हाई वॉल्यूम में घर की सफाई चल रही है मेरी जान नमस्ते टू यू माई ब्यूटिफुल प्यारी सी मामी रेखा हमारी पड़ोसन है जी और घर की सफाई हो रही है दैट्स वेरी गुड तो चलिए सफाई के साथ साथ थोड़ा सा आप डांस भी कर सकते हैं हमारे साथ ठीक है हे काफी सालों बाद मेरी बेटी सिमरन माँ नानी और कुछ ऐसे लिखा आपने माँ एंड माई एंड नानी माँ के लिए अच्छा कुछ लिखा है सो घर में है सभी लोग साथ में सो दैट्स फ्रॉम बबीता फ्रॉम बोनक या थैंक यू सो मच बबीता जी सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ए लवली सिलेक्शन एंड अभी के लिए मैं बीच पे रिलैक्स कर रही हूँ आई एम चिलिंग यार आई एम रिलैक्सिंग यार दैट्स अ स्वीट लवली गानों आपके पेरेंट्स के लिए संगीत एंड मीला बहादुर जी के लिए जो गुडलैंड्स के रहने वाले हैं दैट्स विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दीपिका जो साथ दे रही है थैंक यू सो मच दीपिका जी तो चलिए जी लेट्स हिट द नेक्स्ट वन

0: It's not just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
3: तो चलिए जी, 5:40 हो चुके हैं और फिलहाल के लिए ये फिर से लेकर आई हैं, जस्ट लाइक एवरी आफ्टरनून इन योर लवली हेयर सेगमेंट, योर फैशन टिप्स विद Halkori Fashion. जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है शादी का सीजन बहुत चल रहा है मॉरिशस में, सो वाई नॉट हल्दी नाइट के लिए कुछ फन एंड कलरफुल और थोड़ा ग्लैम लुक परफेक्ट कर रहेगा, उसके लिए थोड़ा हम आपको टिप्स दें, चाहिए कि नहीं? तो चलिए जी, सारी आइडिया तो मस्टर्ड येलो साड़ी यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग पिंक ग्रीन ब्लाउज के साथ अच्छा रहेगा, यानी कि आपकी चोली पिंक या ग्रीन रहना चाहिए. और अगर आप ऑरेंज कोरल साड़ी रख रहे हो तो हॉट पिंक ब्लाउज आजकल बहुत फैशन में है विद द कॉम्बो ऑफ ऑरेंज. और अगर पिंक साड़ी पे जा रहे हो सो येलो ब्लाउज सुपर फेस्टिव लगेगा. सो लाइट वेट ओगेंजा शिफॉन या जॉर्जेट, सो यू कैन मूव डांस कंफर्टेबली एंड स्टाइलिंग इज द मेन थिंग है ना. सो झुमकास, कलरफुल बैंगल्स एंड स्मॉल जो पोटली है यानी

0: ने जो आपका हैंडबैग है वो कंफर्टेबल वजूज कोरापुरीज हर वैसे बालों में गजरा या छोटा सा एक फूल आप ऐड कर सकते हैं तो ये हल्दी वाला लुक बहुत देता है. सो बेस्ट कॉम्बो ब्राइट येलो साड़ी पिंक ब्लाउज एंड गोल्ड झुमकास और फ्लावर्स इन द हेयर हल्दी के लिए फुल फेस्टिव वाइब लेकर आते हैं. सो अगर आप हल्दी पे जा रहे हैं तो कल सो डू लुक ग्लैम एंड एंजॉय योर नाइट.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर आज की सुर्खियों पर। आज पोटली में जैव ईंधन और रिन्यूएबल ऊर्जा के रणनीतिक ढांचे का की लॉन्चिंग की गई। इससे पहले भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आस्यावदन के बीच द्विपक्षीय बैठक। फिकोफ्लक में गाला डिनर के दौरान चाइनीज बिजनेस चेंबर ऑफ मॉरिशस की 28वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने व्यापारिक समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नौकरशाही की बाधाएं कम करने का आह्वान किया। 6 महीने बाद पेनल्टी पॉइंट सिस्टम का असर सामने आया। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के रिपोर्ट में 5 प्रमुख यातायात उल्लंघन दर्ज किए गए। इनमें तेज गति और सी बेल्ट नहीं पहनने से आम उल्लंघनों में ये शामिल रहे। विदेश में कोलंबिया में एक अवैध सोने की खदान में हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल बताए जाते हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं कृषि उद्योग सेक्टर के बारे में। इन दिनों फागी एआई का इस्तेमाल करके नई कृषि पद्धतियों को उभारने की कोशिश कर रहा है। सुनिए रिपोर्ट।
1: जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का बहाव, पानी की कमी, ये मॉरिशस में कृषि क्षेत्र के सामने मौजूद कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इनसे निपटने के लिए तत्काल समाधान जरूरी है और प्रिसिजन फार्मिंग एक महत्वपूर्ण समाधान साबित हो सकता है। हम क्यों सही और टिकाऊ तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं? फागे काम करने के तरीकों और स्कीम्स पर फिर से गौर कर रहा है। ये जान ले कि प्रिसिजन फार्मिंग मॉरिशस में पहले से ही काफी हद तक मौजूद है। हमने सभी पशुपालकों के लिए एक निशुल्क एप्लीकेशन बनाया है। इसके जरिए इनवॉइसिंग से लेकर पैदावार तक सभी प्रणालियों पर नजर रखी जा सकती है। मैं मशरूम को अंगूर के पौधे के साथ संक्रामक वातावरण में उगाने में सफल रहा हूँ। मेरा उद्योग अब आगे बढ़ रहा है। खेतिहरों और पशुपालकों को उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय और फागे ने औपचारिक रूप से प्रिसिजन फार्मिंग एंड एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की है। प्रिसिजन फार्मिंग एंड एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम के लिए 2 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण में 40% फाइनेंसिंग, दूसरे चरण में 75% काम पूरा होने के बाद 30% और तीसरे चरण के तहत स्कीम की पूरी रकम मिलेगी। समारोह के मुख्य अतिथि मंत्री अरविंद बुलेल ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उनका कहना है कि कृषि में नवाचार और रचनात्मकता विकसित करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत सहायक है और खेतीहर तथा पशुपालक इसे अपना रहे हैं। उन्हें एआई से भूमि की किस्म, उसकी गुणवत्ता, बीज, फसल, पानी की मात्रा और मंडी के बारे में सभी जानकारियां मिल जाती हैं। हम नौजवानों को आकर्षित करना चाहते हैं क्लीन एग्रीकल्चर की ओर। जूनियर मंत्री फैब्रिस डेविड ने कृषि क्षेत्र में अनुभवों को साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
2: L'intelligence artificielle pas pour en place
1: l'expérience. AI मनुष्यों की जगह नहीं लेगा, लेकिन नए उपकरण साथ लाएगा जिससे पैदावार बढ़ेगी, मात्रा, किस्म, गुणवत्ता बढ़ेगी, रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता कम होगी, दाम में कमी आएगी, खेतिहर पानी की बचत कर पाएंगे। फागे द्वारा हाल में किए गए अध्ययन में 365 खेतीहरों में से 80% ने इंटेलिजेंट फार्मिंग के पक्ष में जवाब दिए।
0: तो अभी आप याचना मिश्रा को सुन रहे थे। तो आज पोटली में रिन्यूएबल ऊर्जा के रणनीतिक ढांचे की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। हम आपको बता रहे थे कि इससे पहले भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आस्यावदन के बीच द्विपक्षीय बैठक लगी। 2024 में मॉरिशस को ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायंस के बायोफ्यूएल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया था। परियोजनाओं को भारत का समर्थन प्राप्त है। और कल के बुलेटिनों में इसकी चर्चा हमने आपके साथ की थी कि मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोली सामानों की खरीद के मुद्दे पर एक समझौता तय हुआ है। सुमेरा अकबर अली।
1: सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की औपचारिक भारत यात्रा के दौरान पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई का मुद्दा चर्चा में रहा था। इस साल की शुरुआत में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान श्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से ये मुद्दा उठाया गया था। कल पोटली में इन सभी बातचीत को सच्चाई का रूप दिया गया जो मध्य पूर्व की जंग से पहले की जाती आ रही है। इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। पोटली में दो दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया, पहली मॉरिशस और भारतीय सरकारों की प्रोटोकॉल संधि और दूसरी दस्तावेज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट की रही। डॉक्टर नवीन राम गुलाम बताते हैं,
3: द साइनिंग ऑफ दिस मेमोरेंडम इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर मॉरिशस, वन दैट विल अबव एवरीथिंग एल्स।
1: ये प्रोटोकॉल संधि मॉरिशस के लिए रणनीतिक अहमियत रखती है। सबसे पहले

0: हमारी ऊर्जा सुरक्षा, हमारी अर्थनीति और पक्के तरीके से दोनों देशों की सॉलिडारिटी और भरोसेमंद रिश्तों को मजबूत किया गया है। सरकार और मुस्लिम जनता की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मॉरिशस और भारत की साझेदारी को मजबूत करने में खुद कटिबद्धता दिखाई। मॉरिशस के लिए ये प्रोटोकॉल समझौता एक संगीन वक्त पर तय हुआ है, जब ऊर्जा की वैश्विक मंडियां अभूतपूर्व बदलावों और अस्थिरताओं का सामना कर रही है। ये G2G समझौता 5 सालों के लिए है। सितंबर के आखिर में इंडियन ऑयल रिफाइनरी से पहली खेप के पहुंचने का इंतजार है। भारतीय पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये तरक्की न सिर्फ एक सादा व्यापारिक ट्रांजैक्शन है, बल्कि दोनों देशों का भरोसा दर्शाती है। हरदीप सिंह पुरी बताते हैं, अब मॉरिशस में ईंधन की सप्लाई की सुरक्षा टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी अनिश्चितता पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 5 सालों की गारंटीड सप्लाई कमिटमेंट पर आधारित होगी। ये कटिबद्धता मॉरिशस की पूरी आयात जरूरतों को पूरा करेगी। ये वास्तव में अपनी तरह का पहला समझौता है जो किसी भारतीय सरकारी तेल कंपनी ने दक्षिण एशिया के बाहर किसी देश के साथ किया है। भारत सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों को रिफाइंड पेट्रोली पैदावारों का निर्यातक भी है। हम इस क्षमता को सिर्फ अपना अधिकार नहीं समझते, हम इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, दुनिया भर में अपने दोस्तों और साझेदारों के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्थिर ऊर्जा स्रोत बनना। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के मुताबिक देश की ऊर्जा सुरक्षा की हिफाजत करने में ये रणनीतिक समझौता बड़ी अहमियत रखता है। वे बताते हैं, भारत एक बार फिर मॉरिशस की समृद्धि और मजबूती के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। दस्तखत किए गए ये समझौता राजनीतिक इच्छा शक्ति को ठोस और स्पष्ट परिणामों में बदलने के इरादे को दर्शाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ कि मॉरिशस और भारत के बीच के विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जाएगा। ये साझेदारी हमारे साझा इतिहास, हमारे मूल्यों और आपसी भरोसे जैसे मजबूत स्तंभों पर आधारित है। भारतीय प्रधानमंत्री के मिशन के दौरान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बात करने तथा ग्रीन ऊर्जा की ओर परिवर्तन पर चर्चाएं हुई।
1: समुद्र की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है, अब इसकी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। भारतीय सरकार की ओर से दिए गए वेव गेज यानी समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है। ये उपकरण 1 साल से अधिक समय से काम कर रहा है। इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी देने पर जोर है। फेरिना या न्यूआ 45 नाम की सेम की किस्म को अच्छी पैदावार और आयरन की अधिक मात्रा के कारण चुना गया है। सरकार इसके बीज पर 75% की सहायता दे रही है। इसके बीज और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। और अब रुक करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम की ओर। वहां की मरम्मत कार्य योजना जल्द ही संपन्न की जाएगी। वहां पर कई अर्ध प्रतिमाओं का संरक्षण किया जा रहा है।
2: फोबियाविल की प्रतिमाएं प्लास्टर से बनी हैं, जिन्हें 19वीं सदी में मानव शास्त्री यूजेन डी फोबियाविल ने मॉरिशस के गुलामों के चेहरों के सांचे से तैयार किया था। उस समय के गुलामों के कुल 53 चेहरों में से 3 बस्त पहले से ही इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। कभी गोदाम के रूप में इस्तेमाल पोर्टवी का पुराना सैन्य अस्पताल निकट भविष्य में इन सभी प्रतिमाओं को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए जगह पर्याप्त है, लेकिन पहले पुनर्स्थापना का काम करना जरूरी है। बहुत काम बाकी है, लेकिन पूरा हो सकता है। हम इसे योग्य बनाना चाहते हैं पूरे कलेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए। इसके लिए मरम्मत और एयर कंडीशनिंग की जरूरत होगी।

0: cela, évidemment, il va falloir travailler sur l'isolation du bâtiment, sur la climatisation.
1: पहले से प्रदर्शित तीन बस्ट फिलहाल कांच की सुरक्षा के भीतर रखे गए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। म्यूजियम की योजना है कि बाकी 50 बस्ट को अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाए।
0: Ça va être un échange avec les équipes de Blois et les équipes de l'ISM.
1: हम चाहते हैं कि इन प्रतिमाओं को खुले में प्रदर्शित किया जाए और न कि कांच के पीछे, जो कि एक बाधा की तरह है।
0: Qui fait un barrage entre le visiteur et l'artefact.
1: France के château royal de Blois में रखे गए बाकी बस्ट को मॉरिशस लाने के लिए पूरी तरह की लॉजिस्टिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी।
2: Il y a toute une logistique à mettre en place, donc préparation d'appel d'offres, etc.
1: Tenders आदि जारी होने होंगे जो château de Blois की मांगों की अनुरूप हो। France और मॉरिशस के बीच की यात्रा के अधिकारी, साथ में इंश्योरेंस, कस्टम्स, सब देखना पड़ेगा। जायजा लेने के बाद जल्द ही रिनोवेशन शुरू होने की उम्मीद है। म्यूजियम को उम्मीद है कि अगस्त 2027 तक इन सभी प्रतिमाओं को यहां प्रदर्शित किया जा सकेगा।
3: समुद्री की लहरें कितनी ऊंची हैं और समुद्र की स्थिति कैसी है, अब इसकी जानकारी तुरंत मिल पाएगी। भारत सरकार की ओर से दिए गए एक वेव गेज यानी समुद्री लहरों को मापने वाले उपकरण से मिलने वाले आंकड़ों के लिए एक नया डिजिटल मंच तैयार किया गया है। ये उपकरण एक साल से अधिक समय से काम कर रहा है। इससे समुद्री लहरों में होने वाले बदलाव को समझने और समुद्र से जुड़े खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी।
4: आज सुबह रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों में बंदरगाह क्षेत्र में लहरों की कोई असामान्य गतिविधि नहीं दिखी गई। स्क्रीन पर ये आंकड़े वेव रिकॉर्डर से प्राप्त होते हैं, जिसे एक वर्ष पहले समुद्र में स्थापित किया गया था। ये उपकरण पानी की सतह की गतिविधियों को लगातार रिकॉर्ड करता है।
5: Vague, par exemple, cyclonique. Et tout ça a des caractéristiques différentes, mais c'est sa fréquence-là qui permet de déterminer quel type de vague.
4: इस यंत्र की एक और खासियत ये हिंद महासागर के कई देशों को जोड़ने वाली प्रणाली से जुड़ा हुआ है।
5: C'est une bouée qui font partie d'un réseau, qui est un réseau régional. Dans plusieurs pays où gagne même type de bouée, donc tout relié. Et comme ça, nous avons comment une vague peut propager à travers le bassin océanique.
4: लेकिन वास्तव में उपकरण काम कैसे करता है?
6: Le bouée li émet un signal par signal radio. Ça signal radio là, li transmet li vin sa l'antenne qui situé le bâtiment ici. Depuis sa l'antenne là, li al de nous un ordinateur, côté un logiciel qui automatise différentes analyses là-dedans, li envoie ça dans le plateforme de Ocean Observatory. C'est une base de données centralisée géospatiale.
4: इस उपकरण की उपयोगिता केवल समुद्र की गतिविधियों पर नजर रखने तक सीमित नहीं। इससे प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल समुद्री पूर्वानुमान और समुद्र से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
5: En hiver, nous gagnons beaucoup anticyclone qui fait que nous gagnons beaucoup la houle depuis le sud. Et justement, ça bouée là, aider pour constater comment ça man houle là peut propager depuis le sud jusqu'à le nord. Ici, nous recevons la donnée, mais après nous diffusons via tous les stakeholders, y compris le pôle. Et donc le pôle, là, il prend souvent une disposition qui besoin par rapport à l'état de mer qui peut être constaté.
4: इस तरह ये उपकरण महत्वपूर्ण आंकड़ों का एक मूल्यवान स्रोत बन गया है। ये हमारे समुद्री पर्यावरण को
7: Si on veut faire un parallèle, on est dans le cadastre au niveau de la terre, mais ce qui est différent dans la mer, c'est nous avons l'océan qui est dynamique, qui reste changé. Alors, nous pas capable, comme si je dirais, mettre un système figé dans le temps. Alors, nous doit être une approche dynamique et tout le temps par rapport au changement qui finit là dans un paramètre, nous adapter nous dans un système pour capable et un développement soutenu.
4: बेहतर ढंग से समझने, प्रबंधित करने और उसका सतत उपयोग करने की दिशा में एक और अहम कदम है।
3: देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों के विकास, उनकी बिक्री और किसानों को जानकारी

0: देने पर जोर है।
1: बासे में उमेश भोला 30 पर्च जमीन पर बीन्स की खेती करते हैं। अब वे पुरानी किस्म रेड पर्ल को छोड़कर पूरी तरह फेगिना की खेती करने का इरादा रखते हैं।
2: Ça c'est un voiture red pearl. Red pearl, il y a une maladie un peu vite. Il n'est pas résistant aux maladies. Ça c'est Ferina. Vous trouvez son rapport même, vous mettez une différence avec ça. Ça, il est résistant contre maladie.
1: Ferina qui bijou per 75% subsidie di jara hi hai. Aur एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा इसे 130 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। किसानों के अनुसार इसका उत्पादन लाभदायक है। बाजार में फेगिना लगभग 150 रुपए आधा किलो बेचा जा रहा है।
2: So, l'avantage n'a plus poids. Est-ce qu'il y en a qui bébête avec lui? Il y a un haricot, mais il y a quand il y a en flégaison un des espoirs vous avez fait.
1: फेगिना को इसके पोषण तत्वों के लिए भी चुना गया है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक है और अनीमिया की रोकथाम के लिए उपयोगी है। फागई फिलहाल स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई बीन्स की किस्मों पर प्रयोग और विकास कर रहा है। ये किस्में कोलंबिया से प्राप्त हुई हैं और ट्रॉपिकल कृषि केंद्र के मार्गदर्शन में इन पर काम किया जा रहा है।
3: Nous arrivons à 5 variétés prometteuses et ça va une variété là, nous pouvons évaluer ici que le bon planteur. Nous trouvons que même s'il n'est pas gagné trop beaucoup la pluie, il n'est pas gagné trop beaucoup fertilisant, mais still, il est plus capable de survivre. Nous n'avons pas besoin de dépendre nos importations de bonnes semences de haut parce que le prix des semences, il peut remonter, il peut aller même.
1: Beans qui khetti mein anusandhan aur vikas ka uddeshya khadya padarthon ke ayat par hone wale lagbhag 35 billion rupaye ke varshik kharch ko kam karna hai. टिकाऊ जमीन प्रबंधन के लिए चीनी विशेषज्ञता की भी मदद ली जा रही है। इस वर्ष AMB 600 किलो बीज बेचने का इरादा रखता है। एक बीघा जमीन के लिए लगभग 100 किलो बीज की आवश्यकता होगी और इससे करीब 3 टन उत्पादन प्राप्त होने का अनुमान है।
0: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 31 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाना आम यातायात उल्लंघनों में शामिल रही है। इन 6 महीनों के आंकड़े सड़कों पर नियमों के पालन और वाहन चालकों के व्यवहार की मौजूदा तस्वीर भी सामने रखते हैं। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ हो सकता है। इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़ कहा जाता है। इसका पता आमतौर पर 24वें से 28वें सप्ताह के बीच चलता है। बच्चे के जन्म के बाद ये अक्सर ठीक हो जाती है, लेकिन माँ और बच्चे की सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद, मर्क एंड को और मोडर्ना की ओर से तैयार इंटिसमेरान नाम के एक खास वैक्सीन ने त्वचा के कैंसर को दोबारा होने से रोकने में अच्छे नतीजे दिए हैं। 1000 से अधिक मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया। शरीर के लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले इलाज के साथ दिए जाने वाले इस टीके ने कैंसर के दूसरे हिस्सों में फैलने के खतरों को भी काफ़ी कम किया है। दुनिया के मौसम पर एलनीनो का बड़ा असर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत महासागर में बन रहा एलनीनो अब तक के सबसे शक्तिशाली एलनीनो में से एक हो सकता है। समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले महीनों में ये अंतर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका असर बारिश, गर्मी और तूफानों पर पड़ सकता है। भारत में मानसून की बारिश सामान्य से कम रही, जबकि अटलांटिक महासागर में तूफानों की विधि भी घटी है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि एलनीनो और जलवायु परिवर्तन का मिला जुला असर 2027 को दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल बना सकता है। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। आज रात को और कल सवेरे के दौरान देश के उत्तर और ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी। शाम को पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और बरसात हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त होगा 5:58 पर, सूर्योदय 6:27 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.tv. NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। मोहम्मद नूरानी मुदू 51 साल के इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात के पौने दस बजे उन्हीं के घर मोगुयाव रुद कौदमास पावे से उठाकर मस्जिद रजा ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए इलाके का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुनाइट एट 9:45 PM। मोफियातिल न्यू ग्रोव में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्री तिरबोहन टेंगो की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूरज के नाम से, सुखराज के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के दौरान उठाई गई। चंबित लेन मैडम लुलू रोजबेल में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती किसुंती शाम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंती राम, लोग उन्हें आरती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके पति संजय शाम के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रॉयल रोड अमोरी में 21 साल के 21 ईयर्स ओल्ड के निमालेन मुनिसोमी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें निलविन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पिता विसालेन मुनिसोमी के मकान अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बेनोदिया दु सैन पियर वाली देप्रेत में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के चंद्रनाथ बुल्किया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान वाली देप्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बहुले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। वाल्मीकि रोड बुआमोंग प्लेंडी पापाई में 30 साल के 30 ईयर्स ओल्ड के चंद्रशेखर रंगलोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें किलान के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9 बजे उनके पिता दिवानंद रंगलोल के मकान प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। मोफ्लेरी

0: circonstances impiamées, circonstances impiamées, et tu es au qui ni la main ni la doux qui me tu ho gai ni la main ni la doux qui me tu ho gai hai. पैदाइश नाम डाला पा लोग उन्हें सिलिया के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थे कल दिन के 10 बजे उनके बेटे कृष्णा नीलादू के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM. डब्लिया लेन बेलव्यू मुगल में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के सत्यदेव सिडोनी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थे कल दिन के 1 बजे उनके बेटे रवि अखिलेश सिडोनी के मकान बेलव्यू मुगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोरी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. Route des Pamplemousses, la croisée vallée des prêtres, Port-Louimé, 60 salle qui est 60 years old, qui chez Durga Lachuman qui est ho gai hai, chez Durga Lachuman qui est ho gai hai. Unke arthi kal din ke 2 baje, unke bhai Vikram Lachuman ke makan, Port-Louis se utha kar antim sanskar ke liye sipahi brûle. Vallée des prêtres ki shumshan bhumi le jaya jayegi. Cremation tomorrow at 2 PM. Royal Road Fondu Sac Me 73 साल के 73 years old के लक्ष्मी प्रसाद हीरा की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अमित हीरा के मकान फोंजू साक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजू साक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. बैठका रोड यूनियन पार्क में 88 साल के 88 years old के मोहर लाल सिंह राम खिलावन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें महेश के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे कैलाश राम खिलावन के मकान बैठका रोड यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोज बेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
2: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: खूबसूरत गानों का ये सिलेक्शन स्पेशली आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं ऑन RMT रेडियो मस्ती और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट योर डेडिकेशंस जी हां जो आपने बड़े प्यार से हमें भेजे हैं ऑन 5499194 पर और आई हैव गॉट समवन किरान एंड ही इज फ्रॉम ज़ंजिबार एंड ही इज लिसनिंग टू आवर रेडियो और वो बोलता है रोज सुनता हूं एंजॉय भी करता हूं ब्यूटीफुल मॉरिशियन वाइब्स थैंक यू सो मच सो डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन स्पेशल बर्थडे विशेस ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ नंदिता उंटिया के लिए हु इज इन मॉरिशियस राइट नाउ सो विशिंग यू अ मैजिकल birthday my dear

0: Radio Masti.
1: Bilkul ji, I just want to wish you Nandita loads of love and happiness and happy birthday. Best wishes coming from Mami Kiran or Papa Ravin Untia, and keep rocking Radio Masti. Thank you so much, my dear. And we do have Sandhya. Sandhya bolti hai. आज उनकी बहन साधना का भी जन्मदिन है जो रिविया जोंपा की रहने वाली है. सो सांडिया जी, साधना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर फैमिली, विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच माय डियर. सो अगला गाना जो है ये उन तमाम सुनने वालों के नाम जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन.
2: आर एम टू रेडियो मस्ती.

थैंक यू जी, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए ऑन रेडियो मसी. एंड यस, फिलहाल के लिए स्टूडियो के घर में 6:54 हो चुके हैं. इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू. थोड़ी देर में आने वाली है हमारी प्यारी सी दिव्या आपका साथ देने के लिए. एंड अभी के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. एंड डू एंजॉय योर वीकेंड एंड किक स्टार्ट ईच एंड एवरी हैप्पीनेस ऑफ योर्स ऑफ दिस वीकेंड. जी हाँ, मेक इट अ मोटो और यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट यू शुड बी स्माइलिंग. ठीक है, सो हैव अ लवली वीकेंड एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक always on Radio Mercy.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है दौरे भागे अभी स्टूडियो में पहुंच गए हैं हम आप लोगों का साथ देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग। हमने प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे एक अलग ही मूड के साथ और एक अलग ही वाइब के साथ। ऑफ कोर्स इट्स अ फ्राइडे इवनिंग। हम और आप साथ साथ हर एक पल को हम यादगार बनाएंगे और फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ साथ हम आपके हर एक पल को धमाकेदार ही बनाने के लिए आए हैं। तो चलिए आपके मैसेजेस का हम इंतजार करेंगे और 5499124 ऑफ कोर्स दिव्या का साथ है टिल 9 PM और हमें मौका मिल रहा है कुछ खूबसूरत धमाकेदार गाने आपको सुनाने के लिए टू गेट यू इन द वाइब एंड टू मेक यू ग्रूव अ लिटिल बिट। और वैसे सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होता है खाना खा लेने के बाद डांस। बॉडी मूवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर के कामकाज में उलझे हुए हैं या फिर आप खाना खाकर थोड़ा बॉडी मूवमेंट करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट गोइंग ऑन अ शॉर्ट वॉक, या फिर आप डांस करना चाहते हैं तो वी गॉट द बेस्ट ऑफ म्यूजिक फॉर यू। सो चलिए आपके मैसेजेस का इंतजार ऑन 5499124। 7:07 ऐसे ही हम और आप साथ साथ हैं टिल 9 PM।
0: फिल्मी जान
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: वैसे लेट मी टेल यू आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स मोका।

रास्ते पर रुक रुक कर गाड़ियां चल रही हैं, स्पेशली नॉर्थ रीजन में. राउंड अबाउट ऑस्टिनल में भी रुक रुक कर गाड़ियां चल रही थी, एंड ऑफकोर्स वेदर की साइड में भी. अगर आप लोग वेदर की ओर बढ़ रहे हैं, वहां पर रीजन तो फिलहाल के लिए तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस ट्रैफिक जाम को देखकर दे आर हेडिंग टुवर्ड्स पोर्ट लुईस. कुछ लोगों ने पोर्ट लुईस का रास्ता पकड़ लिया है. तो अगर आप भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, आपको हम कहेंगे बोंक वॉश एंड हैव सम पेशेंस एंड कीप एंजॉयिंग द लवली म्यूजिक ऑन RM2.

0: बेला एंड टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड वीमेन आउट देयर. शायद आप लोग तैयार हो रहे होंगे पार्टी शार्टी करने के लिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि फ्राइडे है तो बस रिलैक्स करना है, घर पे रहना है, अपने कंफर्ट जोन में और अपने फेवरेट स्पेस में रहना है, विच इज़ योर होम. एंड कुछ लोगों के लिए होम इज़ नॉट अ बिल्डिंग, इट्स अ पर्सन. और अगर आप इस वक्त अपने फेवरेट पर्सन के साथ हैं एंड यू आर गेटिंग द चांस टू लिसन टू सम ऑफ द ब्यूटीफुल धमाकेदार गाने और एट द सेम टाइम यू हैविंग अ ग्रेट टाइम विद योर फेवरेट वंस, तो चलिए कुछ और गाने आपको सुनाने हैं टू गेट यू इन द मूड. एंड चलिए कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. आप कहाँ पर पहुँचे, रोड पर ट्रैफिक जाम है या फिर आराम से आप अपनी मंजिल की ओर पहुँच पा रहे हैं, डू लेट अस नो. एंड साथ में आपके मैसेजेस को तो हम वेलकम कर ही रहे हैं. एंड चलिए यहाँ पर करिश्मा के लिए नेक्स्ट ट्रैक हो जाए. हमेशा आए दिन आपके लिए मैसेजेस आते रहते हैं लेकिन कौन भेजता है अभी तक हमें पता नहीं चला. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन हमें याद करने के लिए एंड टू ऑल दोस जो इस वक्त अपने इस फ्राइडे इवनिंग को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं. सो आप जुड़ जाइए RM2 रेडियो मस्ती के साथ, बिकॉज वी गोना हैव द बेस्ट ऑफ म्यूजिक एंड द बेस्ट ऑफ मोमेंट्स विद यू टुगेदर.
1: फिल्मी जान RM2 रेडियो मस्ती.

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: फिल्मी जाम OMG रेडियो मस्ती।
2: भाई देखिए प्लेटफॉर्म नंबर जो भी हो हम यहाँ पर वी आर ऑल सेट टू बर्न द डांस फ्लोर और हम यही चाहते हैं अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर अभी आप बस में हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं या फिर अभी घर थोड़ी देर में आप पहुँच जाएंगे बस आप एक काम करिए कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए टिल 9 PM बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि हमारे गीतों को सुनने के बाद यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वाइड एंड ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेसेस और हम यही चाहते हैं और इसलिए कोशिश और हम ये एफर्ट डालते रहते हैं टू कीप दिस प्रेटी स्माइल ऑन योर फेसेस। ऑलरेडी 7:34 इफ यू हैविंग योर मील राइट नाउ आपको बना पे चीशु आहार एंड चलिए टू ऑल दोज जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं आप से हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाएगा ज़रूर टू ऑल दोज जो अभी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं मे बी आई डोंट नो आप अगर रास्ते पर निकल चुके हैं आपको हमें बताना है कि जहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पर रास्ता क्लियर है या नहीं है ऑफ कोर्स यू डू नॉट नीड टू सेंड मी मैसेजेस इफ़ यू आर ड्राइविंग अगर आपके साथ पैसेंजर हैं कोई तो उनको मैसेज भिजवाइए और आपको तो पता है ही एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू डोंट हैव टू यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग और स्पेशली अगर आप पार्टी करने वाले हैं ये हर फ्राइडे आपसे हम कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस फ्राइडे को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो आप इसको मेमोरेबल ही बनाइए एंड हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो या फिर बस कुछ बुरा हादसा हो जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यू अपनी तरफ से अपना प्रिकॉशन जरूर लेते रहिएगा एंड कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो मस्ती क्योंकि यहाँ पर पार्टी मोड और पार्टी मूड ऑन है।
1: फिल्मी जान
3: OMG रेडियो मस्ती।

0: Filmi Jam.
1: RMG Radio Masti.
2: देखिए आज फ्राइडे इवनिंग है और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आए। हाँ, कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, स्पेशली अगर आप किचन में होते हैं और प्याज काटते हैं, या फिर अगर आपको नींद आ रही है। फ्राइडे है भाई, अपनी नींद को बाय-बाय कहिए एंड हम इस फ्राइडे वाइब्स को बिल्कुल और भी दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं विद सम ब्यूटीफुल वंडरफुल सॉन्ग सिलेक्शंस। तो चलिए, यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, गुड इवनिंग, प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई टू प्रिंसेस रेवांश रेयांश फ्रॉम वाइफ वशिनी मोमवेदा एंड दिस इज फ्रॉम विजय पुलुदू ऑफ हाईलैंड्स। थैंक यू सो मच विजय साहब हमें याद करने के लिए एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त शायद काम पर होंगे। हाँ, फ्राइडे इवनिंग को काम पर होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि वर्क इज़ वर्शिप, आप मेहनत से काम करते रहेंगे तो बिल्कुल आगे चलकर इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ, आपको मौको आज, इट्स अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग एंड वी कीपिंग द फ्राइडे वाइब्स ऐसे ही आप लोगों के साथ टिल 9 PM।
0: फिल्मी जाम
1: RMG रेडियो मस्ती।

फिल्मी जाम रेडियो मस्ती दिल लगी गुजरात दी एंड। चलिए यहाँ पर हम तो पूरे मॉरिशस में अपनी आवाज़ सुना रहे हैं और आपको गाने भी सुना रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारी आवाज़ सिर्फ मॉरिशस में नहीं बल्कि मॉरिशस से थोड़ा और आगे पहुँच गई है। कहने का मतलब यही है कि सात समंदर पार बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो चाहे आप मॉरिशस में हैं या फिर अब्रॉड में हैं, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड फॉर चूजिंग योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। 8:05 एंड उम्मीद करते हैं दैट यू हैविंग द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड क्यों ना हो, आपको एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड आई जस्ट होप कि जो आप वेट कर रहे थे इस पल का, आप उस पल को पूरी पूरी अपनी बाहें पसारी इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ रीजन टू सेलिब्रेट, रीजन है गुड म्यूजिक और साथ में गुड फ्रेंडशिप। हमारी और आपकी दोस्ती तो हमेशा इतनी ही गहरी होती है एंड वी कीप लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इस बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए यहाँ पर हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 9 PM, दिव्या का साथ इन योर फिल्मी जाम till 9 p.m. waiting for your messages once again on 5499-1294. Filmi Jam. RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: भाई देखिए, आप पार्टी शार्टी करने के लिए निकल चुके हैं तो घर वापस तो एक टाइम पे आपको जाना ही है। एंड वंस अगेन रिमाइंडिंग यू कि अगर आप पार्टी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, यू डोंट नीड टू ड्रिंक एंड ड्राइव, ये बिल्कुल आप अवॉइड करें। 8:15 हो चुके हैं, दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ RM2 एंड वी आर टुगेदर टिल 9 PM। अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, जस्ट होप यू हैविंग अ म्यूजिकल ड्राइव, और यही बस उम्मीद करते हैं कि चलते चलते आप ज़रूर अपने मैसेजेस ड्रॉप इन करेंगे 5499-1294।
0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
0: ऑलराइट, 8:40 हो चुके हैं एंड चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है। हेलो आरजे दिव्या, आकाश हियर लिसनिंग टू यू एंड वॉकिंग टू गंगा तलावा एंड फ्रॉम पिचित्रा फ्रे एंड आप पहुँचे हैं माहो वाकुआ विद योर ग्रुप विशिंग ऑल कावर्थीज बुं कुआज हर हर महादेव टू ऑल एंड ओम नमः शिवाय टू ऑल रेडियो मस्ती लिसनर्स। थैंक यू सो मच आकाश। एंड चलिए श्रावण मास का जो महीना है वो एकदम पावन है और चलिए इसी संदर्भ पे एक गाना हो जाए टू ऑल दोज जो गंगा तालाब की ओर बढ़ रही है। फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: दिल है लफंगा बड़ा कहने का मतलब तो यही है कि है अपना दिल तो आवारा। चलिए यहाँ पर दिल को थोड़ा हम और भी खुश कराते हैं कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ। वी हैव दिस ब्यूटीफुल वन अफगान जलेबी फॉर यू एंड ये गाना खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ।

0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 8:56 हो ऑलरेडी एंड चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल फॉर योर सैटरडे आफ्टरनून जहां पर हम आपसे मिलने आएंगे शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक. फिलहाल के लिए ये गाना खास तौर से मिस्टर सुनील रघुबीर के लिए और वथियुले जो आपने मैसेज भेजा है यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में क्या कहें ये देखकर आपकी वाइफ इतनी खुश हो जाएगी. ये मैसेजेस तो हम वेट ही कर रहे हैं कि कब उन तक हम पहुँचा पाए ताकि उनको भी पता चले कि उनके पति उनसे कितना प्यार करती हैं. तो चलिए मिस्टर सुनील रघुबीर द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली फॉर यू फॉर योर वाइफ और आपकी दो बेटियों के नाम.

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई मैं हूं वेदिता, आ गई हूं लेकर आपके लिए आप ही का अपना लेट नाइट ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो मस्ती पर। तो भाई रात जवां है और आपका मूड भी काफी मस्त होगा, तो चलिए इसी के साथ मैं और आप साथ में मिलकर रेडियो मस्ती पर करते हैं थोड़ा हंगामा। अपना रेडियो सेट का जो वॉल्यूम है उसको हाई रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं धमाकेदार गाने।

भाई 4 बजे आपकी तो छुट्टी हो गई, आप तो घर पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऑफिस से निकलकर घर जा रहे हैं क्योंकि उनको सारा काम कंप्लीट करना होता है ताकि उनका वीकेंड कोई डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए, हम भी चाहते हैं कि आपके इस मूड को कोई डिस्टर्ब ना करे।

देखो भाई, हम तो यही जानते हैं कि फ्राइडे का बस एक ही रोल होता है, स्माइल ज्यादा करो, स्ट्रेस को कम करो। और आज का हमारे जो प्लेलिस्ट है, एकदम आपके लिए ऐसे ऐसे रिमिक्स गाने लेकर आएंगे कि आपके पैर जो है ना ऑटोमेटिकली टैप करने लगेंगे। तो रेडी हो जाइए हमारे धमाकेदार गीतों के साथ, हम आपको कर रहे हैं एंटरटेन आपके अपने रेडियो मस्ती पर।

डांस का मूड यहाँ पे सब पे चढ़ गया है, गाने ऐसे हैं तो सोएगा कौन, और हम सोने के लिए थोड़े ना प्रोग्राम करते हैं, हम तो जगाने के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए इन्हीं गीतों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कहीं भी हैं, अपने आप को रोकना नहीं, जहाँ मन करे डांस निकले, निकलने दो, करने दो।

पता है म्यूजिक जो होता है ना एकदम हमारा मूड बदल देता है। ये तो सबसे अच्छी बात हमें अच्छी लगती है म्यूजिक के बारे में कि कोई भी गाना सुन लो ना अच्छा लगता है कि जैसे अभी अभी हमारी टेंशन ना रफु चक्कर हो गया, भाग गया, कहीं पे डिसअपियर हो गया। तो म्यूजिक का ऐसा ही असर आप पे हो। इसी के साथ वी कंटिन्यू विद सम ग्रेट म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो।

पता है म्यूजिक जो होता है ना एकदम हमारा मूड बदल देता है। ये तो सबसे अच्छी बात हमें अच्छी लगती है म्यूजिक के बारे में कि कोई भी गाना सुन लो ना अच्छा लगता है कि जैसे अभी अभी हमारी टेंशन ना रफु चक्कर हो गया, भाग गया, कहीं पे डिसअपियर हो गया। तो म्यूजिक का ऐसा ही असर आप पे हो। इसी के साथ वी कंटिन्यू विद सम ग्रेट म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो।

ओ माय गॉड, टाइम रियली फ्लाइज यार. और कंपनी अच्छी हो तो ऐसा लगता है कि भाई अभी अभी तो शुरू किया है और अभी जाने का भी टाइम हो गया है. घबराओ नहीं, मैं यहीं पे हूँ लेट नाइट ग्रूव्स रेडियो मस्ती पर विनीता आपके साथ है. चलिए मूड को थोड़ा और हाई करते हैं.

RM2 Radio Musty.

हमारे जितने भी लिसनर्स इस समय साथ दे रहे हैं हमारी, अ बिग हाई फाइव टू यू रेडियो मस्ती लवर्स. मैं हूँ विदिता. बताइए फ्राइडे नाइट में आपके क्या क्या प्लान्स हैं? कोई सोचता है कि भाई चिल मारते हैं घर पे, कोई कहता है चलो डिनर पे चलते हैं, कोई कहता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं. हाँ, वैसे चिल करने के लिए डिनर के बाद आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं. तीनों काम एक साथ हो जा, चलो तीनों काम, तो तीनों काम एक साथ हो जाएगा. जो भी हो हमारा क्या, हम तो आपके साथ हैं. हम आपके साथ आपके रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, मैं आपके घर में भी हो सकती हूँ, मैं ड्राइव में गाड़ी में भी हो सकती हूँ. गाने हमारे कमाल के हैं, सुनिए और मूड बना दे. चलिए

ओह माय गॉड टाइम रियली फ्लाइज यार. और कंपनी अच्छी हो तो ऐसा लगता है कि भाई अभी अभी तो शुरू किया है और अभी जाने का भी टाइम हो गया है. घबराओ नहीं, मैं यहीं पे हूँ लेट नाइट ग्रूव्स रेडियो मस्ती पर विनीता आपके साथ है. चलिए मूड को थोड़ा और हाई करते हैं.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

हमारे जितने भी लिसनर्स इस समय साथ दे रहे हैं हमारी, बिग हाई फाइव टू यू रेडियो मस्ती लवर्स. मैं हूँ विदिता. बताइए फ्राइडे नाइट में आपके क्या क्या प्लान्स हैं? कोई सोचता है कि भाई चिल मारते हैं घर पे, कोई कहता है चलो डिनर पे चलते हैं, कोई कहता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं. हाँ, वैसे चिल करने के लिए डिनर के बाद आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं. तीनों काम एक साथ हो जा, चलो तीनों काम, तो तीनों काम एक साथ हो जाएगा जो भी हो हमारा क्या. हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ आपके रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, मैं आपके घर में भी हो सकती हूँ, मैं ड्राइव में गाड़ी में भी हो सकती हूँ. गाने हमारे कमाल के हैं, सुनिए और

नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू यू और फिर मुलाकात करेंगे कल. जी हाँ, सैटरडे नाइट यही प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए लेट नाइट ग्रूव्स. तो आप ग्रूव करते रहिए, मूड बनाते चलिए, फिर मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर. म्यूजिकल सफर हमारा यहाँ पे रुकेगा नहीं, वैसे भी यहाँ पर गीतों का सफर जारी है आपके लिए 24 आवर्स. अपना ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर.

हमारे जितने भी लिसनर्स इस समय साथ दे रहे हैं हमारे, बिग हाई फाइव टू यू रेडियो मस्ती लवर्स. मैं हूँ विदिता. बताइए फ्राइडे नाइट में आपके क्या क्या प्लान्स हैं? कोई सोचता है कि भाई चिल मारते हैं घर पे, कोई कहता है चलो डिनर पे चलते हैं, कोई कहता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं. हाँ, वैसे चिल करने के लिए डिनर के बाद आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं. तीनों काम एक साथ हो जा, चलो तीनों काम, तो तीनों काम एक साथ हो जाएगा. जो भी हो हमारा क्या, हम तो आपके साथ हैं. हम आपके साथ आपके रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, मैं आपके घर में भी हो सकती हूँ, मैं ड्राइव में गाड़ी में भी हो सकती हूँ. गाने हमारे कमाल के हैं, सुनिए.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

You're listening to RM2, a Radio Must See.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Bun?
1: Hum.
2: RM2.
3: Radio Musty.
2: Feel the musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।